फिल्म ब्लफ मास्टर से सुने हमें मुकेश जी के आवाज़ में कि सोचा था प्यार हम ना करेंगे पर हो गया, क्या करे, ये खास फरमाइश हम यहाँ से सुनेंगे।

फिल्म भाभी से निकाल दिया गया है। नेखंतीन 705 तक के ये पिक्चराइज किया हुआ फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी के आवाज में। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है, मेरी हर दुआ प्रार्थना तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए है। तुम्हारी हर अदा मेरे दिल को चुराने के लिए है। अब तो मेरी जान तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। अब तो मेरी जान मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार के लिए है। इस बार है मोहम्मद रफ़ी जी एक बार फिर। आई गो ये क्या हो गया।

हेमंत कुमार जी की आवाज़ में है। फिल्म का नाम ब्लफ मास्टर, और ब्लफ मास्टर ये फिल्म नेहंतिन द्रियन सेस्तक में पिक्चराइज किया गया है।

फिल्म धूल का फूल से सुने हम कि धड़कने लगे दिल के तारों की दुनिया। नेक नफ तक में ये पिक्चराइज किया गया।

शाबाश, क्या बात है, लता जी की आवाज में हम पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज में फिल्म आदमी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश, मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं, ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाई। द्रमर तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म विक्टोरिया तुनोद्री में से निकाल कर हमने पेश किया है ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आर डी बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुएजी में 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी, जी पी सिप्पी, ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का, सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं। फिल्म सीता और गीता हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, लेकिन फिर सस्तक का ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिर सस्तक का ये गीत, सुन लीजिएगा।

0: दिखली।
1: रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तोहार गोरिया। जैसे मैंने कहा नहीं कि फिर से अशफ़ का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर जो हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

पुरित नारायण जी आपको सुनाए, चांद की चांदनी गुलामों की कली, मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म का या नॉन फिल्म का होगा, मुझे नहीं पता। अगर आपको पता हो, अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे, नहीं मिला, और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। VVV.FM.NL पर आप चून है, जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो, रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ

दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो रेडियो। अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं? अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

कि तुम मेरी बाहों में हो। अलका याग्निक जी और सोनू निगम जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए नदीम श्रवण के साज पर, और पेश हुआ फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए। उम्मीद है यह लवली गीत आपको अवश्य पसंद आया होगा। और ये सांस लेने का सिलसिला की बात हमने की ना, अब इसकी निर्णय आप ही लीजिए कि कैसा हुआ होगा, कैसा होना चाहिए था। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, चलिए फिल्म क्रिमिनल की ओर जाते हैं। फिल्म क्रिमिनल तो आपने अवश्य देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म क्रिमिनल में से निकाल रहे हैं और ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, इस तरह से आ रहा है।

फिल्म क्रिमिनल में से निकाले हैं जी नहीं, सोनू निगम नहीं, कुमार सानू, कुमार सानू का ये द्वैत अलका जी के साथ हम आपको सुनाए हैं। चलिए एक गीत हमने बहुत प्लानिंग में रखे हैं और वो गीत है कि प्रेम प्यार मोहब्बत में कितनी हसरत होती, कितनी खुशी होती है, कितनी खुशियाँ लोगों को मिलता है, कहाँ तक सच है कहाँ लेके झूठ है, ये दोनों साहिबान आपको मिलके सुनाएंगे, यानी कि कुमार सानू और साधना सरगम, ये दोनों इसके बारे में आपको सुनाएंगे, बस सुनिए।

साधना सरगम के साथ। जी हाँ, साधना सरगम के साथ कुमार सानू आपको सुनाए नदीम श्रवण की लिखी हुई गीत, नहीं बजाई हुई गीत, समीर की लिखी हुई गीत। जी हाँ, समीर की लिखी हुई गीत और नदीम श्रवण ने बजाए हैं। चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं। आप चाहे जहाँ भी होंगे धरती पर, प्रेम प्यार मोहब्बत तो हमेशा होता है, चाहे धरती पर जहाँ भी होंगे। तो यही कहानी अलका याग्निक जी और कुमार सानू मिलके दोनों आपको सुना रहे हैं। बस ध्यान से सुनिए।

हमको तुमसे प्यार हुआ है, जीना दुश्वार हुआ है, ये प्यार मोहब्बत की दास्तां आपने सुने हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। लेकिन किशोर कुमार जी ये कह रहा है, आपने तो दिल के बातें की हैं, लेकिन मैं दिल से तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ही तरफ का है। किशोर कुमार जी आपको सुना रहे हैं, सुना बस इस तरह से आ रहा है एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी, आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश किए इस तरह से। गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा यहाँ तक मेरा ख्याल है। लेकिन किशोर कुमार जी भी तारीफ़ करने से चूकता नहीं है, तारीफ़ ही तारीफ़। लीजिए एवरग्रीन किशोर कुमार, एक बार फिर से तारीफ़ की तारीफ़, तारीफ़ ही तारीफ़।

बस आपने किशोर कुमार जी की तारीफ सुनी ना, फिल्म जंगल में मंगल में से निकाल कर, हाँ आप ठीक सुने, फिल्म का नाम है जंगल में मंगल, उसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं। प्रेम प्यार मोहब्बत में कसमें भी खाते हैं, जी हाँ, पता नहीं आप कभी कसम खाए होंगे या नहीं, बस इसका निर्णय आप ही लीजिए या बसलेस आप ही कीजिए, मतलब लीजिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कसम खाने की सिलसिला।

क्या बात है, अलका जी और उदित नारायण मिलके ये द्वैत आपको सुनाए हैं, ये कस्में खाने की बातचीत। तो मुकेश जी कह रहा है कि उन्हें तो थोड़ा डर लग रहा है, प्रेम प्यार मोहब्बत में मुकेश थोड़ा चंट है, तो वो कह रहा है, और क्या कह रहा है, चलिए हम आपको सुनाते हैं।

जानम देख लो दूरियां, उदित नारायण जी आपको सुनाई ये शानदार गीत फिल्म वीर जारा में से निकाल कर हमने पेश किए हैं। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है संजीव कोहली, लेकिन ये गाने जो हैं इस फिल्म का, ये इस फिल्म का के गाने कभी मदन मोहन जी ने बजाए थे। तो मदन मोहन जी संजीव कोहली का पिता है, जी हाँ, यानी बाप मदन मोहन, बेटा संजीव कोहली। तो बरसों बाद मदन मोहन के ना होने पर संजीव कोहली ने वही गाने के नए धुनों में और नए तोड़ मरोड़ के नए साज में सुनाए हैं आपको। इसका एक पूरा सीडी है किस तरह से गाना संजीव कोहली ने बनाकर, अपने पिता का गाना बनाकर और नए फिल्म में डालने, कभी आपको सुना देंगे ज़रूर। चलिए

लता जी की आवाज में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओफर फावनी रस्तानी रेडियो फिल्म लुटेरा में से निकाल कर। लेकिन ये पता नहीं है कि उन दिनों या पुराने ज़माने में भारत में सेपी रात थे या नहीं, यानी समुद्री डाकू थे या नहीं, पता नहीं। समुद्री डाकू का ये फिल्म है लुटेरा जो इंडिया ने बनाए कभी और हमने पेश की ओफर फावनी हिंदुस्तानी रेडियो। चलो देख।

मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए, फिल्म दिल ने पुकारा में से ही निकाल कर हमने पेश की नेगेटिव सेशन सेस्त का ये गीत, और हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलो सुनते हैं। फिल्म जंगली में से निकालने हैं शंकर जय किशन के साथ पर ये शर्मिला टैगोर और शमी कपूर का कमाल है।

दीवाना हुआ बादल, ये शानदार गीत हमने पेश की। लेकिन शुरू में हमने कहा था फिल्म जंगली, लेकिन फिल्म जंगली का नहीं है, लेकिन ये है फिल्म कश्मीर की कली की। लेकिन बीच में हम रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए नहीं कहा। फिल्म कश्मीर की कली में से निकाल कर ओपन एयर के साज पर नहीं था ये, और हमने पेश की ओ फॉर फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो।

एक बात पूछूं या बोलो, लता जी और रफ़ी साहब मिलके आपको सुनाए फिल्म कठपुतली में से निकाल कर नीख दे एने सही फिल्म तक का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने आपको सुनाए हैं। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है? चलो हम ये आपको सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, उदित नारायण और साथ ही मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की मोहब्बत में से निकाल कर। जी हाँ, यतीन ललित के साज पर हमने पेश की ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, ये है इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, क्या बात है, एवरग्रीन जी नहीं, द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाहोन हिंदुस्तान। तो अगर आप तत्पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे, जो भी कर रहे होंगे, जिस देश में भी होंगे और कार्यक्रम फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का सुन रहे हैं, और वीफी द्वारा वहाँ पर और इंटरनेट द्वारा आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत।

फिल्म हंसते जख्म में से हमने निकाले हैं, तुम जो मिल गए हो। और रफ़ी लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये गीत उफ़ाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? जी हाँ, सुन लीजिएगा, क्योंकि ये गीत जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए मैंने भी नहीं सुने हैं। फिल्म आत्मा राम ने से निकाल रहे हैं, और रफ़ी साहब की आवाज़, जी नहीं, लता जी की आवाज़ में हम पेश करने वाले। इसे ध्यान से सुनिए, इस गीत में बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, क्या ख्याल है? चलो सुनते हैं। थोड़ी देर ध्यान से सुनिए ये गीत।

0: तुम्हारे बिन गुजारे हैं कई दिन अब ना गुजरेंगे। लता जी, मैं तो भूल ही गया था कि रफ़ी की आवाज़ भी इसमें है। रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको ये शानदार द्वैत सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिनों बाद हमने ये गीत सुने हैं, 7-4-5 साल हो गया होगा, और शायद हमारे सहयोगी ने आपको सुनाया होगा, तो मेरा बदनसीबी है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ।
1: दुनिया में जो ले हिम्मत से काम,
0: महेंद्र कपूर जी।

आपने सुने महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए कि बड़ा आदमी कौन है, हमने निकाल कर आपको सुनाए इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको तो ये गीत हमें यही बताता है कि सूट बूट पहन लेने से, टाई यानी जैकेट को ऊपर एक दास बांध लेने से, महंगा जैकेट पहनकर या कुछ सोने का चेन लटकाकर और बड़े गाड़ी में चलना, 70-80 हज़ार का गाड़ी में चलना, ये वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो दिल से किसी को चाहे, उनका दिल बड़ा है, पैसा बड़ा नहीं। तो यही कि महेंद्र कपूर जी आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की। चलिए अगला गीत इस तरह से आ रहा है, ये तो प्यार करने वाले सिखाते हैं कि कैसे प्यार

जी फिल्म उपासना में से निकाले हैं। हाँ आओ तुम्हें मैं प्यार सिखा दूं, लता जी और रफ़ी की आवाज़ में आपको सुनाएगा निगती एन सेफन तक। 1971 का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय दुनिया में जो धर्म के नाम पर भयानक विध्वंस हिंसा कांड जो हो रहा है, इसमें आपको दुख होता है, सो ठीक ही है, बहुत ठीक है। प्रत्येक विचारशील पुरुष को दुख होता है सज्जनों, जो आज की दुनिया में हो रहा है धर्म के नाम पे। लोग ढोंगी बन चुके हैं काफी। वास्तव में अध्यात्म जगत का शिरोमणि भारत, जो प्रत्येक वस्तु परिस्थिति में आत्मा या ईश्वर को देखकर आत्मा कल्याण के कार्य करता था, आज वो भी पथ भ्रष्ट हो रहा है। तो अन्य देशों का क्या बात है, समझने की कोशिश कर। हर एक देश में आज धर्म के नाम पे लोग धर्म का चोला ओढ़कर लूट रहे हैं, जनता को उल्लू बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी धर्म प्रचारक लोग ऐसे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा ऐसे जनता को डरा डरा कर उन्हें ये करवा वो करवा कर पैसा उनसे ले रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। सच्ची बात तो ये है कि हम पहले आत्मा हैं, फिर मनुष्य है, फिर हिंदू मुसलमान ईसाई आदि हैं। हम पहले हम आत्मा हैं, फिर अमुख देशवासी हैं, फिर अमुख जाति है सज्जनों, मगर पहले हम तो आत्मा हैं। अमुख प्रदेश के हैं, अमुख परिवार के हैं, फिर हम अमुख व्यक्ति हैं सज्जनों, मगर पहले हम आत्मा हैं। सभी लोग आत्मा हैं, और जिससे जिसमें आत्मा पर आघात होता है, प्रभाव पर दुखी होता हो, वैसा कोई भी कार्य कभी भी व्यक्तिगत स्थिति से लेकर मनुष्य की स्थिति तक किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए सज्जनों। जो आपको अच्छा ना लगे दूसरों को लिए मत किया कर, दूसरों को ही अपना ही समझो, अपने आप ही समझो। पर भाई बहन आज देखिए कितने लोग कुछ ऐसी स्थिति में पड़कर जहां उनके रास्ता बंद दिखाई पड़ता है, उनकी नजरिया में बंद दिखा पड़ता है, बिना सोचे समझे कि बात में इसका परिणाम क्या होगा, बस खुद खुशी कर लेते हैं, यानी सेल्फ मोड। ये क्यों, हमारे धर्म प्रचारक लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये जनता के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ कार्य करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं वो करवा, क्या यही काफी है? जनता को समझाओ बतलाओ, प्रतिदिन टीवी पे रेडियो के माध्यम से उनको बतलाओ समझाओ कि धर्म क्या है, धर्म हमको क्या बतला रहा है, क्या करने के लिए, खुदकुशी क्या है, क्यों हम खुदकुशी करें, परिस्थिति आ गई ऐसा स्थिति ऐसा उलझन तो हम अपने को जान मार ले। अरे वो तो अनजान है, तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो उनको बतलाओ प्रतिदिन। पैसा कमाना जरूरी है, मगर ऐसे ना कमाओ कि सिर्फ पैसा पे ही ध्यान रहे, मनुष्य जनता पर अपने आत्माओं पर ध्यान करो, उनको पहले सुखी बनाओ, फिर अपने आप पैसा आपके पास आएगा। क्षमा करना, शायद कोई को कड़वा लगा हो ये बात, तो हम आपको अपना हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करके आपको आपसे क्षमा चाहते हैं, मगर ये सत्य है आज जो दुनिया में हो रहा है। ये धर्म प्रचारक लोग पीछे रह गए हैं, इनकी वाणी में कोई वैसे शक्ति कोई सच्चाई नहीं निकल रहे हैं, तभी तो दुनिया के लोग काफी लोग धर्म से हटकर धर्म को भूल गए हैं, धर्म पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, अन्य चीज करने लगे हैं सज्जनों। ऐ दुनिया वालों, मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ जाए, खुदकुशी करने के लिए मजबूर हो जाए, और जिसने वो स्थिति पैदा किया है, आपस में दो आत्मा जानकर एक पिता के संतान मानकर उस समस्या को उस स्थिति को सुलझाओ, आपस में बात करो, सहायता करो, ताकि खुदकुशी करने वाली अशुभ घड़ी टल जाए, हट जाए। सज्जनों खुदकुशी नहीं ठीक है, मौत तो आएगा एक दिन, तो हम खुद जानबूझकर क्यों मौत के मुंह में कूदे।
खुदकुशी करने से आपका समस्या तल नहीं जाती, बल्कि और गंभीर आप उस स्थिति को कर देते हो, और गंभीर कर देते हो। परिवार दुखी हो जाते हैं, बच्चे बिखर जाते हैं, गृहस्थी टूट जाती है, ये सब जीवन रुक जाती है सज्जनों। और खुदकुशी करने वाले व्यक्ति तो किस अंधकार या नरक में जा पड़ता है, ये तो परमात्मा ही जाने। भक्तों, खुदकुशी करना कायरों का, बुजदिलों का, डरपोंक लोगों का काम है, और आप तो इन सब में से तो नहीं हो। मानव, पशु पक्षी, हिंदू मुसलमान, ईसाई, मालिक मजदूर, ब्राह्मण चांडाल, सगे संबंधी, पिता पुत्र, पति पत्नी, सभी में एक आत्मा है। हर एक मनुष्य में एक आत्मा है, तो हमको आत्मा के माध्यम से आपस में सहायता करना है, लूटना नहीं, छल कपट करना नहीं, चलाकी नहीं करना है, ठगना नहीं है, किसी को डरवाओ मत। नाटक के पात्र की भांति अपने जिम्मे का काम करना, सावधानी के साथ भले भांति, पर कभी यानी कहीं भी किसी में भी राग द्वेष ना रहे। सज्जनों, राग द्वेष करने वाले के अंदर, किसी को डरवाने के लिए, और जो लोग चलाकी से कुछ काम कर रहे हैं, चलाकियां से कुछ कमा रहे हैं, कोई मतलब से इनको डरा करके ये कमा लूं, वो कमा लूं, मैं धनवान बन जाऊं, आप धार्मिक हो ही नहीं सकते हो, असंभव। आप मरने के बाद शायद नरक में भी जाएंगे। क्षमा करना, बात तो कड़वा लगता होगा मगर सत्य है। परमात्मा को जानने वाले प्रेम करते हैं, और प्रेम करने वाले किसी को देखकर जलते नहीं, किसी को ठगते नहीं, प्रेम करते हैं। किसी को देखकर जलन नहीं करना कि इस साला को हम क्या करें कि इनका बदनाम हो, ये परमात्मा का संतान नहीं हो सकता, असंभव। ये शैतानी आदत है, जिसमें सबका हित हो, सब सुखी हो, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। पर जब मनुष्य का स्व अत्यंत सीमित हो जाता है, तब वो छोटे छोटे स्वार्थ में सीमित होकर और उसमें अपनी भलाई समझकर ऐसे ऐसे कार्य करता है जिससे ना उसका भला होता है, ना दूसरों किसी का, सज्जनों, ना दूसरे किसी का। दुख अशांति बढ़ते हैं, जीवन अस्त व्यस्त तथा उखड़ा सा रहता है। किसी को दुख देकर आप आजमाइए, आप सुखी कभी नहीं हो पाएंगे, असंभव। पाप में ही कर्तव्य बुद्धि एवं गौरव बुद्धि होने का कारण पाप से छूटने की कभी इच्छा ही नहीं होती, और नए नए पाप बढ़ते रहते हैं। सज्जनों, जो लोग पाप करते हैं, दिन रात पाप ही सोचते हैं, कैसे कमा लूं, कैसे हड़प लूं, कैसे किसी को ठग लूं, तुम पापी हो, तुम्हारा बुद्धि स्वच्छ कभी नहीं हो सकता है, तुम प्रतिदिन पाप कमा रहे हो, अपने परिवार को भी उसमें डबो देते हो। सज्जनों, सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्षमा करना, एक बार फिर बोल रहा हूं, कड़वा लग रहा होगा बात मगर सत्य है। धर्म निभाओ तो ठीक से निभाओ, और ना सिर्फ बोलो कि मैं धार्मिक हूं, मैं ये हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये करने जानता हूं। अरे क्या करने जानते हो, सभी तो कुछ कर लेते हैं। अशांति में ही मृत्यु होती है, और मृत्यु के बाद नरक भोगनी पड़ती है सज्जनों, पापी लोगों को। पर आज तो विद्वान, नेता, उपदेशक, शासक, आचार्य, विद्यार्थी, धनी, मजदूर, प्राय सभी मोह जनित सीमित स्वार्थवश इसी ओर जा रहे हैं। सभी लोग, मैं किस ओर जा रहा हूं ये तो मुझे पता ही नहीं, मगर फिर भी कोशिश कर रहा हूं। सज्जनों, कोशिश करना, अरे तुम्हें तो परमात्मा इतना दिया है, क्या और कमाना है, क्या और लूटना है किसी को।

अगर धन दौलत कमाना है तो मेहनत से, सच्चाई से किसी को दुख ना पहुंचाओ। जितने तुम खाली करोगे उतने ही परमात्मा तुम्हारे झोलिया में भरते जाएंगे। खाली करो वो डालेंगे दुगना, मगर तुम तो दूसरों को छीन रहे हो, कोशिश में लगे हो छीनने को, तो क्या भरेगा भगवान तुम्हारे लिए? कुछ नहीं भरेगा ना। पता नहीं क्या परिणाम होगा आपका, पापी लोग का क्या परिणाम होगा, लुटेरे लोग को, ढोंगी लोग का क्या परिणाम होगा। जो बचे रह सके उन्हें बचे रहकर तथा संभव हो तो भगवत कृपा का आश्रय लेकर, अमृतवाणी ज्ञान का आश्रय लेकर फैलते हुए विष प्रवाह को रोकने का यथा साध्य प्रयत्न करना सज्जनों, प्रयास करना चाहिए। आगे प्रभु का कृपा। और जो लोग ढोंगी रचते हैं धर्म के नाम पे, मैं आपको एक छोटा सा उपमा बतला रहा हूं। एक गांव में एक साधु, एक भक्त जा रहा था। रास्ते में देखा एक जगह, सामने एक सरोवर, पानी बह रहा है, खूब आनंदित। उसने सोचा कि चलो यहीं एक झोपड़ी बना लेते हैं, बड़ा आनंद में जिएंगे, भगवान का प्रार्थना भी करते रहेंगे, सूर्य सामने से उगता है। वो भक्त बना लिया झोपड़ी, बैठ गया। शाम को जब वो स्नान करके बैठा और ध्यान करके देख रहा है इधर उधर, तो नदी के उस पार एक कोठी, एक बड़ा सा बंगला। सोच रहा है कि वाह कितना शानदार बंगला है। अचानक उस बंगला के छत पर यानी बालकोनी पर एक बहुत खूबसूरत स्त्री आई और इसने सोचा कि ओ यही होगी ये घर की मालकिन। फिर देखते रहा, क्या देख रहा है कि एक पुरुष वहां पर आए वो गए, फिर दूसरा पुरुष आए फिर गए। अब ये देख रहा है कि कितने पुरुष आते जाते हैं, ये बीत होते होते कई दिन बीत गए और ये देख रहा है प्रतिदिन। बस इत्तेफाक से दोनों एक ही दिन का, इनके दोनों का मृत्यु हो गए, दोनों मर गए एक ही दिन। अब ये साधु बाबा को जमदूत लेने आए और वो औरत जो उस बंगले में रहती थी उनको देवदूत लेने आए, दोनों को ले जा रहे हैं। अब तो ये साधु बाबा सोच रहा है कि अच्छा कोई गलती हो गया ये समझ बुझने में, वैसे तो उल्टा होना चाहिए, देवदूत मेरे पास होना चाहिए और जमदूत वो लड़की के, वो औरत के पास। चलते चलते एक मोड़ पर आए, बाएं ओर नरक जा रहे हैं और दाएं ओर स्वर्ग। अब ये जमदूत साधु बाबा को लेकर नरक जा रहे हैं और वो औरत को लेकर जा रही है स्वर्ग को। बस ये साधु बाबा बिगड़ गए कि हाय क्या है खबरदार, मैं उम्र भर भगवान की भक्ति करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, तू मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो, हाय खबरदार। और ये औरत शरीर को बेचने वाली वेश्या को तुम स्वर्ग ले जा रहे हो, गलती कर रहे हो। अब ये झगड़ा करने लगे तो जमदूत ने सोचा कि बबुआ साला क्या झगड़ा कर रहा है, खोपड़ी का पीरा है ये, ले चलो इनको भगवान के पास, भगवान स्वयं निर्णय करे। ले गए प्रभु के पास दोनों को, ध्यान करना क्या मैं बतला रहा हूं, दोनों को ले गए भगवान के पास। अब ये बुढ़ा आदमी साधु बाबा भगवान से झगड़ा करने, हे प्रभु ये क्या अन्याय मेरे साथ हो रहा है, मैं उम्र भर आपका भक्ति करता हूँ, पूजा पाठ सेवा कर रहा हूँ और आप मुझे नरक भेज रहे हो, और ये औरत जो शरीर को बेचने वाली वेश्या है इनको आप स्वर्ग भेज रहे हो, खूब दिया भगवान। भगवान चुप होकर सुन रहे थे। जब ये साधु महाराज अपना कथा सुना चुके तो भगवान पूछते हैं कि हो गए ठीक बस, तो भगवान कहते हैं तू सुन, तू भले ही उम्र भर मेरे ही पूजा किया है, सब कुछ किया है, मगर शाम को स्नान करके जब तू अपने झोपड़ी के पास सामने बैठते थे और इस औरत के बंगला में देख रहे थे, तो तू प्रतिदिन गिनती कर रहे थे कि कितने पुरुष उसके पास जा रहे हैं और कितने आ रहे हैं, ये गिनती तू कर रहा था और अंदर में अपने भीतर में तू उबी रंग ललिया मना रहे थे कि मैं भी जाना चाहता हूं देखने को कि कैसे क्या मजा मिलता है वहां, हम भी जाना चाहते, मगर तू गिरवा कपड़ा यानी साधु बाबा का कपड़ा पहिर कर
डर के मारे जा नहीं सकते थे, क्योंकि तुम्हें लोग साधु समझते थे, तू तो पुजारी है, तू धार्मिक है, धर्म प्रचारक है ना। तू मन ही मन में पाप कर रहा था और ऊपर से भक्त बना रहा था, तो मुझसे तुम्हारे ऊपर ऊपर से कुछ लेना देना नहीं है। तू अंदर से क्या है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, बता है सत्य की झूठ है। तो ये बूढ़ा ने अपना सर नीचे कर लिया, क्योंकि सत्य बात रहा। इस ससुरा प्रतिदिन सोच रहा था कि हम भी जाए वहां कैसे लागी है, मगर डर के मारे जनता क्या बोलेंगी थी चुपचाप बैठे रहते थे। तो भगवान बोले, अब तू सुन ये औरत को जिसको तू वेश्या कह रही है, सुन। जब तू अपने झोपड़ी में घंटी बजा रहे थे, अगरबत्ती जला रहे थे, आरती गा रहे थे, शंक फूंक रहे थे, तो ये औरत अपने कोठी में वहां पर बैठकर इतना व्याकुल होती थी, तरफती थी, बेहोश हो जाती थी कि हे प्रभु, ऐसा दिन कब आएगा कि मैं भी आपका आरती उतारूं, हम भी अगरबत्ती जलाए आपके आरती करूं, पूजा करूं और आपकी सेवा कर पाऊं प्रभु। ये तरफती थी शरीर से, इसने क्या की मजबूरी के कारण, मगर आत्मा से ये तो प्रतिदिन मेरे ही चिंतन में थे। तो आत्मा से तुम क्या कर रहे हो, आत्मा से तुम क्या हो, तुम्हारा भावना क्या है, ये हमारे लिए गिनती में है। और ना तू क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये तो ठीक है, होना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पेंशन सिस्टम से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कर्म के अनुसार कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई जीवन में उसका फल मिलेगा। मगर इसी जन्म में तू मेरे को पाना चाहते हो तो तुम्हारा भाव कैसा है, आत्मा से कितना स्वच्छ हो, क्षमा करना। इससे हम आपको बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक आत्मा आत्मा है। तुम परमात्मा से किस तरह पेश आ रहे हो, बाहरी दिखावा भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। अगर बाहरी दिखावा कुछ होता तो मरने के बाद परमात्मा तुम्हें शरीर सहित अपने पास बुला लेता, मगर तुम्हारा शरीर तो यहां छूट जाता है, सड़ जाता है, गंदगी, लोग कहते हैं कि भगाओ भगाओ हाली से, तो शरीर से नहीं और कर्म जो किए हैं उनके अनुसार अगले जन्मों भविष्य तुम्हारा बनेगा।

तो सज्जनों, ईर्ष्या करने वाला अपने ही रक्त को ईंधन की तरह यानी जलाने वाले सामान की तरह जलाता है, वो स्वयं को ही सुखाता है, अपना ही दम खुश्क करता है, अपना ही रक्तचाप यानी ब्लूड को बढ़ाता है, अपने ही जीवन को बोझिल करता है। मित्रों, ईर्ष्यालु अपने ही खुशी को भूसे के भाव सुलगाता है, सूखा हुआ घास के तरह सुलगा देता है। ईर्ष्या तो टीबी का बीमारी है, जानते हैं ना, टीबी की बीमारी तपेदिक है, जिसे मनुष्य की हरारत यानी टेम्परेचर सदा ही बनी रहती है और व्यक्ति खाए खाए खाए खाए खाए खाए खोंकते रहते हैं, खांसते रहता है। सज्जनों, द्वेष तो दावानल यानी जंगल की आग की तरह है, जो झाड़ी झाकर के साथ अच्छे अच्छे पेड़ों को भी नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। साथ ही द्वेष भूकंप का रूप लेता है, कभी बॉयलर यानी गर्म करने वाले मशीन के फटने का, कभी राइफल की गोली यानी बंदूक की गोली का, और कभी हाथ गोले यानी हाथ खरनाथ का, ये काम कर बैठता है ईर्ष्या, ईर्ष्यालु मनुष्य। ईर्ष्या और द्वेष से भरे व्यक्ति की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, क्योंकि वो तो कभी भी फट सकता है, ना घर के ना घाट के है ऐसे लोग। ये लोग इंसान में गिनती नहीं है, क्षमा करना, आप ऐसे हो तो फिर आप भगवान की तरफ नहीं है, आप तो शैतान की ओर है। मित्रों, तो मन का सच्चा मीत कौन? इस संसार में मन का सच्चा मीत भी कोई मानव थोड़े ही है, मनुष्य थोड़े ही है। ऐसे ही सभी दम दला से देते हैं, मित्रों सभी दम दला से देते हैं। हाथ में 5-10 रुपये का नोट लेकर सिर पर घुमाकर वारी या कुर्बान जाते हैं, है ना। सच्चे योग के बिना कौन निस्वार्थी हो सकता है, कौन? सभी आशाएं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं, सभी का कुछ तकाजा है, कोई मांग है। मित्रों, अगर कोई कुछ देता है तो कल लेता भी है, कल लेगा भी, लिए बिना ना स्वयं मुक्त होता है ना हमारा छुटकारा होने देता है। समय पर कोई सच्चा योगी ही साथ देता है मित्रों, और वो भी अपने सामर्थ्य और परिस्थिति के अनुसार। सच्चा मित्र तो एक परमात्मा ही है, सच्चे अर्थ में एक वही दाता है, वही दाता है जो कभी लेता नहीं है मित्रों, हमेशा ही देता ही रहता है। वही सर्वशक्तिमान भी है, दयालु और कृपालु भी, कल्याणकारी भी, परम हितैषी भी। विश्वास तो करो मित्रों, उसको छोड़कर सृष्टि के मनुष्य एकजुट होकर भी मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, सब मिल करके भी नहीं कर सकता है कल्याण। हाँ, मार देते हैं बंदूक से, जैसे आजकल ओरलोक वगैरह हुआ थे ना, अरे आप तो देखते हो जी टीवी पे, और हर एक टीवी पे भी देखते हो, जिसके अपने दोनों हाथ हथकड़ियों में और पांव संकलों में हो, वो दूसरों को क्या छुड़ाएगा, क्या छुड़ाएगा। मित्रों, जिस

सहारा चाहिए, वो दूसरों का स्थाई एवं सच्चा मित कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। मित्रों, मनुष्य को हम अपना मित मानकर मन की कोई बात बताते हैं तो वो उसका भी लाभ लेता है, लाभ लेता है। उसे हम अपनी किसी कमजोरी की बात कहते हैं तो वो हमारी उस कमजोरी का भी नाजायज फायदा लेता है। इसलिए अपने बात अपने मन में रखो, भगवान से बोलो, मित्रों हम उससे कुछ राय सलाह करते हैं इंसान से तो वो हमें अपने अधीन मानकर हमें चलाने लगता है, नचाने लगता है अपने इशारों पर। कलयुग की इस काल में मित्रों, जबकि इंसान में ना गंभीरता है, ना सामाने की शक्ति, ना हित कामना, ना मित्रता को निभाना, तब भी यदि हम किसी मनुष्य को सच्चा मित मानकर चलते रहें तो अवश्य ही हमारी बुद्धि की यह कमी है। विश्वास करो मगर मित्रों, संभल के। दो, एक भगवान ही सहारा है, भगवान ही सहारा है। जब सभी छोड़ जाते हैं मित्रों, सब छोड़ जाते हैं, तब भी एक वही आश्रय रह जाता है, परमात्मा। मनुष्य से मांगना तो अपनी इज्जत गंवाना अथवा अपनी पगड़ी उसके पांव पर रखना है। मित्रों, मैं ये बात बतला रहा हूं मगर फिर भी कभी कभी अवसर ऐसा आ जाता है कि मजबूरी एक बहुत भयानक राक्षस है। मजबूरी में लोग कभी कभी गधे को बाप बोलते हैं, बोलना पड़ता है। क्या करें, मनुष्य को अपने जीवन में ये तो स्पष्ट रूप से समझ ही लेना चाहिए कि अगर कोई सच्चा दोस्त या साथी है या कोई मन का मीत है तो वो एक परमात्मा ही है, परमात्मा ही है।

अतः मन का नाता उस ही से जोड़ना चाहिए। आज लोग मन को कहीं भी स्थिर करने का अभ्यास करते हैं और उसी को योग कहते हैं, उसी को योग कहते हैं मित्रों। परंतु सच्चे अर्थ में योग वो है जिसकी आधार भूमि में ये भाव

समाया हो कि एक परमात्मा ही मन का सच्चा मीत है, प्रियतम है और समर्थ सहारा है, और किसी से भी वैर भाव द्वेष या दुश्मनी करना मूर्खता है, भ्रष्टता है। मित्रों, निकृष्टता बहुत खराब है, और दलदल में धसने के समान है। मित्रों, ये ईर्ष्या द्वेष जलन कुटनाई इस सब क्यों कर रहे हो? जीवन भर पूजा पाठ करते आ रहे हो, मंदिर जाते हो, भजन सुनते हो, भजन गाते हो, हैं? फिर भी मन में द्वेष, ईर्ष्या, कुटिलता, कायरपन इत्यादि इत्यादि। अरे तो तुम तो भगवान के भक्त हुए या किसी और चीज का? ईर्ष्या द्वेष ये सब तो राक्षसी आदत है, शैतानी चीज है। हे, तुम कौन हो? अपने आप को पहचानो प्यारे प्यारे भाई बहनों, पहचानो। मित्रों, मन वचन और कर्म की पवित्रता में ही जीवन का संपूर्ण आनंद है। पवित्रता के बिना श्रेष्ठ चरित्र की कल्पना व्यर्थ है। इसीलिए मन वचन से शुद्ध रहो, यही तुम्हें काम आएगा मरने के बाद सज्जनों। और जैसे बिना चाहे संसारिक दुख मिलता है, ऐसे ही बिना चाहे सुख भी मिलता है। अतः साधक संसारिक सुख की इच्छा कभी न करे तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है, मगर आप तो दरिद्र की तरह ग्रीडी हैं, आप हाही की तरह सब कुछ अपना रहे हो और सब कुछ छूट जाएगा, आनंद नहीं ले पा रहे हो, बीमार हो गए हो, हर एक तरह का बीमारी आपको है। अरे तो का फायदा हुआ? पैसा कसल है, धन दौलत कसल है आपको, है, मगर आनंद नहीं ले पा रहे हो। अरे तो का भाई भाइयों, उसी पैसा से सेवा करो। लक्ष्मी सेवा करती है, लक्ष्मी विष्णु की सेवा करे तो ठीक है, अगर उल्टा काम हो जाए, लक्ष्मी आपकी सेवा करे ठीक है, आप लक्ष्मी की सेवा करेंगे तो गड़बड़ तोरी। जब पैसा आपकी सेवा करें, सेवा करवा रहे हो, दूसरों की सेवा करे हो, बहुत ठीक है। आप पैसा की सेवा बैठकर उसी का जाप करेंगे तो खेल गड़बड़ हो जाएगा। वही आप कर रहे हो, पैसा पैसा पैसा पैसा, पराया माल अपना जो भी ढंग से कमा रहे हो, आने दो, है, उम्र बीतत जाल थे, पैसवा कमती है, भी और बना ले। कब रुकी हो? कब रुकना है? कब इन सब चीजों का आनंद लेंगे आप? मरने के समय या मरने के बाद? मुझे पता है काफी लोग यहाँ खूब पैसा कमा कर अरे खत्म कर लिए हैं सब कुछ। मित्रों, ऐसे नहीं करना है। जीवन का दूसरा नाम समझौता है। समझौता भी किया करो जीवन में। आज मैंने आपको दोस्ती और दुश्मनी के बारे में दूसरी भाग यानी आखिरी भाग बतलाया। प्रभु, आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

पिछले बार मैंने आपको भोग आशक्ति कैसे छूटे पहला भाग बतलाया था। आज आपको दूसरी भाग बतलाने जा रहा हूं, भोग आसक्ति कैसे छूटे। सज्जनों, जो जीवन अभी आपको बाकी है उसमें थोड़ा आनंद प्राप्त करने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ कीजिए ना, मेहनत करिए ना। इन बातों को सुनकर पिछले बार बतला रहा था आपको कि परमात्मा की प्राप्ति को लोग कठिन मानते हैं, परंतु वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। सज्जनों, कठिन नहीं है, बल्कि भोग आसक्ति का त्याग कठिन है। बुरी आदत छोड़ने के लिए वो कठिन है, अच्छाई अपनाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं, मगर बुरे आदत को छोड़ना, वाह बहुत मुश्किल। भगवान ने कहा है, जिनकी भोग अवसंग्रह में आसक्ति है वो परमात्मा को प्राप्त करने का निश्चय भी नहीं कर सकता। क्या बात भगवान ने कही, निश्चय भी नहीं कर सकता है। सज्जनों, परमात्मा को प्राप्त करना तो दूर रहा, हमें परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है, अपना कल्याण ही करना है, ये बात उनमें दृढ़ नहीं रहती। इसीलिए हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। अतः जब तक भीतर में भोगों का तूफान महत्व बना हुआ है, तब तक बातें भले ही सीख जाएं, पर परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जब निश्चय ही पक्का नहीं रहेगा तो फिर परमात्मा प्राप्ति होगी ही कैसे? आप तो निर्णय ले ही नहीं सकते हो, मन स्थिर नहीं है, तो क्या आप तो डमाडोल हो, तो कैसे परमात्मा प्राप्ति होगी? अगर आप जड़ असत क्षण भंगुर पदार्थों से ऊंचे उठ जाओ तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, नहीं है। और ये सब काम करने के लिए आपको सबसे पहले छल कपट झूठ निंदा चुगली चाई से दूर होना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसको प्राप्त करने में क्या कठिनता है? कठिनता यही है कि जो नहीं है, कि जो नहीं है उसमें उलझ गया, आकर्षण हो गया। जो सत्य नहीं है उसको हम सत्य मान बैठे हैं। है कि प्राप्ति कठिन नहीं है, नहीं का त्याग करना कठिन है भक्तों, नहीं का त्याग करना। जब नहीं का भी त्याग नहीं कर सकते तो फिर और क्या त्याग करोगे, क्या त्याग करोगे? आप सुनते हो, त्याग करना है, त्याग करना है, क्या त्याग करना है? किस चीज को, कौन, क्या, कैसे, क्यों त्याग, कब त्याग? अपनी बुरी आदत का त्याग करो। आश्चर्य की बात है कि आप जानते हुए असत्य का त्याग नहीं कर सकते हैं। जानबूझकर आप त्याग नहीं करना चाहते हो और कहते हो कि परमात्मा हमको प्रेम नहीं करता है। अरे तू परमात्मा को प्रेम नहीं करत हो। जिनको जानते हो कि यह असत्य है, नाशवान है, सदा साथ रहने वाले नहीं है, आने जाने वाले हैं, उनका भी त्याग नहीं करते, ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सज्जनों, जानबूझकर हम उसमें फंसे हुए उलझनों में, जो सत्य नहीं उसी में हम लिपटे हुए हैं। अरे उनको छोड़कर एक दफा तो परमात्मा की ओर जाओ तो फिर देखो। सज्जनों, असत्य का आकर्षण कैसे छूटे? भक्तों, इसके लिए कर्म योग का पालन करें। और ये सब चीज की ओर जाने से पहले मैं बार बार यही बतला रहा हूं कि पहले बुरी
बुरी आदतें जो है आप में, झूठ छल कपट निंदा चुगली चाई बुराई वगैरह वगैरह, ये सब को छोड़ना शुरू करो तो बाकी काम आने लगेंगे भी। सज्जनों, गीता में भगवान ने कर्म योग की बात विशेषता से कही है और उसकी महिमा गाई है। कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग की बात गीता में जितनी स्पष्ट मिलती है उतनी अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती है। सज्जनों, कर्म योग का तात्पर्य है दूसरों को सुख देना और बदले में कुछ भी न चाहना। बता रहा हूं ना, दूसरों को कैसे सुख देंगे आप? झूठ मत बोलो, निंदा चुगली छल कपट मत करो, मगर नहीं, वो सब चीज तो आप खुद अपना के तिजोरी में रखे हुए हो, अपने तिजोरी में, तब सुख शांति कैसे मिलेंगे आपको? माँ बाप को सुख देना है, स्त्री पुत्र भाई भतीजे को भी सुख देना है, सभी को सुख देओ, पड़ोसियों को भी सुख देना है, सबको सुख देना है। सज्जनों, सबको उसको काम में लाओ तो असत्य का आकर्षण यानी उलझन खिंचाव छूट जाएंगे। मेहनत तो करो, शुरू तो करो किसी तरह से, दूसरों को सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, ऐसा जो भाव है ये बहुत दामी चीज है, कल्याणकारी चीज है, मामूली नहीं है। और ये सब की बस की बात नहीं है, आपकी बस की बात नहीं है सज्जनों, या है तो बहुत खुश करते रहना, ये आप ही की बस की बात है। अगर आप चाहते हो कि विषय सामने आने पर हम विचलित ना हो तो इस सिद्धांत को पकड़ लो कि दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे मिले, इसे पकड़ लो आप। दूसरों को आराम कैसे हो, वस्तु मेरे पास हरदम नहीं रहेगी, अतः दूसरे के काम आ जाए तो अच्छा है, ऐसा भाव होने से सबके हित में रति हो जाएगी, भलाई हो जाएगी, प्रेम हो जाएगी। सज्जनों, जब दूसरों के हित में आपकी रुचि प्रेम प्रीति हो जाएगी तब भोग पदार्थ सामने आने पर भी उनका त्याग करना सुगम हो जाएगा, आसान हो जाएगा, आपके लिए फिर कुछ मुश्किल नहीं रहेंगे। मगर प्रेम तो करो दूसरों से, प्रेम क्यों, दुश्मनी करना है तो करो दुश्मनी और भोगो यहां दुख। सज्जनों, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है वहां से हम देख रहे हैं कितने लोग मुड़ी अपना हिला डोला रहे, नहीं नहीं नहीं महाराज, हम तो दुश्मनी नहीं कर रहे, हम तो प्रेम। हाँ, यही बात हम सुनना चाहते हैं, प्रेम करो सभी से, प्रेम करना है तो फिर आपको प्रभु की ओर से प्रेम मिलेगा। सज्जनों, परंतु मेरे को कैसे सुख हो, मेरे को सम्मान कैसे मिले, मेरी बड़ाई कैसे हो, मेरी बात कैसे रहे, मेरे को आराम कैसे मिले, ये भाव रहेगा तो त्रिकाल में भी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भाव रखना पशुता है, मनुष्यता नहीं। सज्जनों, पशुओं जैसे आदत है, मनुष्य की नहीं। दूसरे के हित का भाव होने से आपकी सुख भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। दूसरों को सुख देने के लिए जियो, जो खाली करेंगे आप वो फिर भर जाएगा, अगर खाली नहीं करोगे तो क्या भरोगे? तो अंदर से खाली करो, बुरे चीज को निकालो, फिर अच्छाई को भरो और अच्छाई को बांटो। मगर पता नहीं कि समझ रहे हो या नहीं। हाँ, फिर वहां से सर हिलने डोलने लगे हैं, समझ रहे हैं, जरूर समझना है, तभी तो आप यहां बैठे हुए हमारे सामने। तो सज्जनों, प्यारे प्यारे भाई बहनों,
जीवन में दूसरों को सुख देने के लिए जियो तो आपको अपने आप सुख शांति आनंद प्रेम और हर एक तरह का जो पदार्थ है ये अपने आप आपको मिलेंगे, इस पर विश्वास कीजिए। सज्जनों, दिव्य गुण मानव को ईश्वर के समीप ले आते हैं, जबकि विकार उसे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। विकार मतलब छल कपट निंदा चुगली चाय इत्यादि इत्यादि, ये सब विकार हैं। जब तलक ये आपके अंदर में रहेंगे तब तलक तू दिन रात पूजा पाठ तीर्थ वगैरह करते रहो, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा कर्म के अनुसार, वो कर्म है ना, मिलेगा है। जैसे छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो लोग उनको मिठाई थमा देते हैं, ले खाओ मिठाई खाओ, कुकू खाओ, लेक तोंगो खाओ है, वो थोड़ा देर के लिए चुप हो जाते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर बाद में वही रोना पिटना। इसी तरह आपका है, जब तक आपके अंदर में ये चुगली चाय निंदा द्वेष भाव छल कपट झूठ रहे तो इसी में आप लगे रहेंगे, अटके रहेंगे। सज्जनों, ईश्वर से सर्व संबंध अनुभव करने का अर्थ है कि आप सभी इच्छाओं से पार जा चुके हो। है ऐसे आप में? प्यारे प्यारे भाई बहनों, मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो मिलिए ना सभी से, प्यारे प्यारे भाई बहनों मिल कर रहिए, दुश्मन कोई नहीं है, दुश्मन तो तुम स्वयं पैदा करते हो।

मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा आप सभी का स्वागत। मित्रों, हर्षित मुख के बारे में पिछले अमृतवाणी में आप सुन रहे थे देल एन। आज मैं आपको देल त्वीप बतलाने जा रहा हूँ, श्रवण कराने जा रहा हूँ। हंसमुख बनने के लिए मित्रों, यानी हंसमुख हंस पक्षी के समान मुख वाला बनना जरूरी है। तो जैसे हंस मोती चुगता है अथवा खीर ले लेता है और नीर छोड़ देता है, वैसे ही मनुष्य के नेत्र यदि गुण रूपी मोती ही चुगें और अवगुण रूपी कंकड़ छोड़ दें, उसके कान जब कोई चर्चा सुनते हैं तो ज्ञान रूपी खीर ले लें और व्यर्थ बात रूपी नीर छोड़ दें, और यदि उसका विवेक हंस की तरह काम करें न कि कौवे या बगले की तरह मित्रों, तो वो मनुष्य सदा हंस मुख अर्थात हर्षित मुख ही रहेगा। बच्चों, आप यदि ध्यान देंगे तो महसूस करोगे कि जब मनुष्य किसी का कोई अवगुण देखकर उसे मन में रख छोड़ता है अथवा उसकी कोई गिराने वाली बात सुनकर अपनी बुद्धि में धारण कर लेता है अथवा यदि सदविवेक से काम न लेकर बगले भक्त कपट मुनि या कौवे का सा आचरण करता है, तभी उसका हर्ष गुम हो जाता है, चेहरा पर बदलाव आ जाती है मित्रों, आचरण बिगड़ जाती है। सज्जनों, ज्ञानवान मनुष्य को ये सदा याद रखना चाहिए कि मैं तो परम हंस की सभी का एक हंस हूं, मुझे तो मोती ही चुगने हैं, मोती ही चुगने हैं, कंकड़ नहीं। मैं तो अमृतवाणी का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं, मुझे तो खीर ही ग्रहण करना है, नीर छोड़ देना है। ये गुण अमृतवाणी द्वारा आपको प्राप्त हो रहा है सज्जनों। इस प्रकार जो हंसमुखी मनुष्य होगा वो सदा हंसमुख हर्षित मुख भी होगा ही होगा। जो मनुष्य अमृतवाणी रूपी दिव्य गुण रूपी रत्न अथवा मोती चुगता है मित्रों और दुर्गुण रूपी कंकड़ छोड़ देता है, अथवा जो पवित्रता रूपी क्षीर ले लेता है, वो मनुष्य हंस के समान है और वही हर्षित मुख रख सकता है। तो फिर भी ये कलयुगी संसार ऐसी माया नगरी है मित्रों कि बार बार हमारी खुशी का पारा उतर जाता है। तो अमृतवाणी आपको बहुत सारी उपदेशों में युक्तियां बतलाई है, उपाय बतलाई है, जिनसे आपको बेहद की यानी असीम खुशी मिल सकती है। सिर्फ आपका विश्वास अटल प्रबल और सच्चे होना चाहिए। हम तो परमपिता परमात्मा का तो संतान है, तो उसने तो सारा ही ज्ञान खुशी देने वाला है मित्रों। अगर हम परमपिता का संतान है और उसके पास सब कुछ है, तो आपको सोचना चाहिए कि सारी दुनिया जिसको चाहती है ढूंढती है अथवा याद करती है, स्वयं उस परम पिता परमात्मा ने करोड़ों मनुष्यों में से आपको चुना है अमृतवाणी ज्ञान सुनाने के लिए। तो ये
क्या कम बात है मित्रों, आपको चूना है अमृतवाणी ज्ञान सुनने के लिए। ये कोई लाऊ लाऊ तोरी थोड़ी ही है मित्रों, समझो समझो। तो क्या ये कोई कम बात है मित्रों? अवश्य ही आपका ऊंचा भविष्य है, आपका कोई सौभाग्य जोर पकड़ रहा है कि इतने करोड़ों व्यक्तियों में से परमात्मा ने आपको अपनाया है मित्रों, आपको अपना अनमोल खजाना दे रहा है और दिया है, और सर्वसमर्थ ने आपका विकर्मों में डूबता बेड़ा पार करने की जिम्मेदारी अमृतवाणी उपदेश द्वारा ली है। तो अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है मित्रों कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो? जब आपके मन में छल कपट निंदा है तो सही रास्ता नहीं, सही मनुष्य आप नहीं हो। संदेह क्यों कर रहे हो सज्जनों? ये सत्य है कि आप हकदार हैं। परमात्मा के हर एक चीज पर आपका हक है। वो जो पिता है ना, आपके पिता के हर एक चीज पर आपका हक है। तो आप ही कहते हो भगवान तो हमारा बप्पा है, तो बप्पा के हर चीज पर आपका हक नहीं है मित्रों? तो आपको इस बात की अपार खुशी होनी चाहिए कि सारे विश्व का जो पिता है मित्रों, जिसे भक्त लोग मालिक भी कहते हैं, उसे मैंने पा लिया है अमृतवाणी ज्ञान द्वारा। पाना था जो पा लिया, और क्या बाकी रहा, क्या बाकी रहा मित्रों? प्रभु प्राप्ति होने से तो सब प्राप्ति हो ही जाती है, अतः खुशी तो अपार होनी चाहिए मित्रों। मगर आप खुश नहीं हैं, दुखी हैं, तो आपको भगवान अभी प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्ति से ही तो सदा खुशी होती है, और अप्राप्ति वाले की खुशी गुम हो जाती है, गुम हो जाती है मित्रों। जब आपको परम प्राप्ति यानी परमात्मा में अटल दृढ़ पक्का विश्वास हो गई, तो आपका खुशी का पारा तो दिन रात चढ़ा रहना चाहिए, दिन रात चढ़ा रहना चाहिए। क्योंकि परमात्मा तो बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी बना दे भगवान, बिगड़ी को बनाने वाला है मित्रों। उसे तो विघन विनाशक खेवैया सुखदाता आदि सभी उपाधियां दी जाती है। कै नाम है भगवान को, सोचो तो गिन पई हो है। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, ऐसा ऊंचा जिस आत्मा का पिता शिक्षक और सदगुरु हो, उसे तो खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए। मगर आप तो दुखी है, प्रतिदिन कलाह कर रहे हो, शिकायत, हमार हिया हमार हुआ, ये पिरात वो पिरात, हम ये दुखी ये खुटका, क्या नहीं आप दुनिया भर के बबाल आप में हैं मित्रों। तो किसी का पिता, सज्जनों ध्यान कीजिए, किसी का पिता यदि किसी छोटी सी नगरी का भी राजा होता है तो भी उसे खुशी रहती है। तो जो शाहों का भी शाह है, स्वर्ग के राजाओं का भी राज्य भाग्य विधाता है, उसका जो गोद का बच्चों अर्थात धर्म के नाते से पुत्र है मित्रों, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना ही नहीं होना चाहिए। मगर क्या बतलाएं हम, कितनी दुखी हैं आप, क्योंकि आप में भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है मित्रों। अगर किसी को यदि कोई बहुत ही योग्य शिक्षक या गुरु मिल जाए, तो वो भी समझता है कि अब मैं लायक
योग्य निरोग हो जाऊंगा और कि अब मेरी तकदीर खुल जाएगी। लोग को कोई ज्ञानी मिल गया ऐसे सोचते हैं, और आपके पास स्वयं भगवान है और आप उसमें विश्वास नहीं कर रहे, यही तो प्रॉब्लम है आपको मित्रों। जिसको ज्ञान का सागर त्रिकालदर्शी परमात्मा स्वयं अमृतवाणी के रूप में सदगुरु के रूप में मिला हो, मिल रहा है, उसका तो समझो कि ऊंचा भाग्य बन ही जाएगा। विश्वास करो, यही आपसे हम चाहते हैं, विश्वास और प्रेम। और कुछ नहीं मांगत है हम आपसे, आपका धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। मित्रों जरा सोचो कि आपकी कितनी ऊंची तकदीर है, ये जो आपको अमृतवाणी ज्ञान का तिलक लगा है मित्रों, ये तो भविष्य में स्वर्ग के दैवी स्वराज्य का तिलक बन जाएगा, विश्वास करो। और बार बार मैं यही बात आपको बतलाता ही रहता हूं मित्रों कि ये सब सुख शांति और स्वर्ग पाने के लिए आपको विश्वास, सत्य धारण और मेहनत करना है। बस इसी को कहते हैं सुख शांति आनंद। आप सोचते हैं इतना सहज में, यही तो प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति इतनी सहज रूप में हो सकता है। है ऐसे इस कलयुग में आपको कसरत वगैरह एक टांग पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, है लंबे लंबे यज्ञ पूजा पाठ ये करो वो करो 9-10 दिन जरूरी नहीं है। शास्त्रों का बात बतला रहा हूं, जीवन के तजुर्बा का बात बतला रहा हूं, देखा हूं मैंने। तो मित्रों आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। और जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है वही जीने की कला जानता है मित्रों। मगर आप तो मिलजुल के नहीं रह रहे ना, है दुश्मनी कर रहे हो। मोक्ष आकाश में नहीं है मित्रों, और न पाताल में है, न भूमि लोक में है। चित्त का निर्मल होना ही मोक्ष है। अपने विचार को ठीक करो, चित्त को ठीक करो मित्रों। आज मैंने हर्षित मुख के बारे में दूसरी भाग आखिरी भाग बतलाया। हम यही आशा रखते हैं कि इसे सुनकर आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। मित्रों मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हमको अपने घर जाना है, सही घर, परम धाम जिसे हम कहते हैं, भगवान के दरबार में। जहां से हम आए हैं वहीं हमको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। इस बात को आप मत भूलें प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों। आने वाला अमृतवाणी में दूसरा भाग सुनेंगे आप। आज हम जिस किसी भी मनुष्य के संपर्क संबंध में आते हैं, हम देखते हैं कि उसे कई प्रकार की हथकड़ियां लगी हुई है, उसकी टांगे में कई प्रकार की बेड़ियां पड़ी हुई है, बल्कि इससे भी ज्यादा वो बंधनों में पड़ा हुआ है। क्योंकि हथकड़ियों में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि चाहे तो स्वतंत्र चिंतन तो कर ही सकता है, परंतु जिसके चिंतन को ही हथकड़ियां लगी हुई है, वैचारिक स्वतंत्रता तो रहित वो व्यक्ति तो ऐसा कैदी है कि जिनकी तुलना नहीं है, मित्रों जिनकी तुलना ही नहीं है। आज मनुष्य की ऐसी ही स्थिति है। वो कई प्रकार के लगाव और झुकाव या मनमुटाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और ये आपको पता है, फिर भी आप उससे छुटकारा पाने के लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हो और रात दिन रोते गाते हो, हम दुखी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, अशांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जकड़ा हुआ है वो हर एक तरह के जंजीरों में। उसके व्यवहार और उसकी बातचीत से ये स्पष्ट झलक मिलती है कि वो किसी बंधन में बंध कर बातचीत या व्यवहार कर रहा है। ये पहचान में आ जाता है, मालूम होता है कि उसकी दिमाग पर कोई सवार है, उसे गधा, घोड़ा, खच्चर या ऊंट बनाकर चला रहा है, कोई उसे ये सब चीज बनाकर चला रहा है। किसी का मन किसी वस्तु रूपी खूंटे से बंधा है और बंधा होने के कारण वो वहां से आगे नहीं चल सकता, तो अन्य किसी देहधारी में उसका मन अटका हुआ है और वो भी उस दलदल से निकल नहीं पाता है, मित्रों नहीं पाता है। कभी कभी उसे क्षण भर के लिए ये महसूस भी होता है कि ये सभी व्यर्थ ही के लगाव झुकाव रूपी बंधन है, लगता है उसको ऐसे, इन्हें तोड़ देने में ही मेरी भलाई और मुक्ति है। परंतु फिर भी उसके मन पर जो व्यक्ति या वस्तु हावी है वे उसे मीठी सलोनी पुचकार देकर अपने पाशों में बांधे रहते हैं, अपने लगामों में बांधे रहते हैं। मित्रों, मनुष्य ने निष्ठोमो का आदेश उपदेश सुन तो रखा है, अमृतवाणी का उपदेश सुन तो रखा है, सुन रहे हैं भी, और विचारक प्रचारक तथा सुधारक लोग दूसरों को इसका पाठ पढ़ाने में भी लगे रहते हैं, परंतु वास्तव में मनुष्य मोह माया को नष्ट नहीं कर रहा, बल्कि मोह ममता उसे नष्ट कर रहा है, मोह ममता उसे नष्ट कर रहा है। किसी में किसी व्यक्ति के प्रति मोह नहीं है तो महिमा और उपाधि में मोह है। मित्रों, अन्य किसी का घर और घर वालों में मोह नहीं है तो अपने आश्रम और अनुचरों में मोह है। मित्रों,
राजा जनक के दरबार में एकत्रित सन्यासियों की तरह किसी का अपनी लंगोटी सोटी या अंग वस्त्र और अंगूछे में मोह है। मित्रों, इस मोह ने तो मनुष्य की विवेक को नष्ट कर दिया है। मित्रों, उसके परिणाम स्वरूप वो एक से पक्षपात, दूसरे से अन्याय करता है और बताने तथा समझाने पर भी मोह ममता की फांसी या फंदे को नहीं छोड़ता है। आज लोक सेवा का नाम लेकर भी लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। ये सब लुटेरे हैं, ढोंगी लोग हैं, ढोंग लोग। वे धन दौलत इकट्ठा न भी करे तब भी सत्ता स्थान और यश कीर्ति के प्रलोभन में तो पड़े ही रहते हैं। अधिकार के अहंकार में तो उन्हें मजा आता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों को मजा चखाने में लगे रहते हैं। मित्रों, तन मन धन से सहायता देने वाले, योग से सहयोग देने वाले, कर्मठ होकर ठोस सेवा करने वाले तो और लोग होते हैं, परंतु यश की इच्छा वाले व्यक्ति लोक सेवा का नारा लगाकर, लोक सेवा का डंडोरा पीकर मान शान और साधन सामग्री के मोह के सीढ़ी से अहंकार पर पहुंचकर अंधकार में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, गुम हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। मित्रों, हर वर्ग में, हर कार्य क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों से काम करा के और दाम दिलाकर नाम और इनाम अपने लिए बटोरते हैं और उन्हीं द्वारा सत्ता हत्या कर उन्हीं पर हुकूमत करते हैं। मित्रों, जिन लोगों ने उनको नाम मान सम्मान दिलाया उन्हीं पर ये राक्षस लोग हुकूमत करते हैं, उन्हीं का हत्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। भूल गए कि उन्हीं के कारण उनको ये राक्षस लोग को इतना पावर, इतना शक्ति, मान सम्मान मिला हुआ है, ताकत मिला है कहां से? अगर वे गरीब लोग, जनता लोग इनको नहीं बैठाए तो क्या करेंगे? ये सब पक्का चाटेंगे, दौड़ेंगे गधे की तरह रास्ते पर भीख मांगते। मित्रों, ये सब इच्छाओं के गुलाम हैं, गुलाम है ये सब। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में अनगिनत इच्छाएं और तृष्णाएं हैं, वो यूं ही उन इच्छाओं का गुलाम बनकर स्वयं को छका देता है और अपने जीवन के मूल्यवान क्षण रूपी हरी मोती गंवा देता है। मित्रों, और अंत में जब उसका शरीर चेतना विहीन होकर लकड़ी के अर्थी पर पड़ा होता है, तब लोग जो जीवन भर अपने स्वार्थ के खेल तमाशे करते रहते थे और उसे हैरान, परेशान, नादान और बेवकूफ बनाने में लगे रहते थे, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, सबका यही गत है। मित्रों, तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, कहकर ये सब दिखावे का विलाप करते हैं। लोग चिल्ला चिल्ला कर फिर रोते वहां पर,
उस व्यक्ति के लिए जो परलोक सिधार दिए हैं या नरक को सिधार दिए हैं, रोते हैं चिल्लाकर दिखाने के लिए। इच्छाओं रूपी वे गुलाम घोड़े पर चढ़ना तो मनुष्य तब भी नहीं छोड़ता है, मरने के बाद भी लोग इससे करते होंगे, और जो अभी नहीं मरे वे वहां दिखाते हैं क्या नाटक करते हैं वहां पर चिल्ला चिल्ला कर। शायद आप उनमें से एक भी हो, है ना? नहीं करना, गलत बात है मित्रों। तो धन्य है वे थोड़े से व्यक्ति जिनकी बुद्धि इन बातों या लफड़ों से आजाद होती है, उनका ही जीवन बड़ा हल्का और सुखमय होता है। वे ही सभी प्रकार की गुलामी की जंजीरों से छूटे हुए होते हैं। वे किसी के दबाव, लगाव, झुकाव और धमकाओं में ना आकर अपनी वैचारिक स्वतंत्रता के धनी होते हैं और स्वयं प्रभु द्वारा बताए मार्ग पर मित्रों वे खटके चलते हैं। उनका जीवन सच्चे अर्थ में अंत सुखाए और बहुजन हिताय होता है, परंतु प्रश्न उठता है कि हमारा जीवन इन सभी लफड़ों से फारिंग कैसे हो, छुटकारा कैसे मिले। तो मित्रों, हम इन सब धंधों से छूटे कैसे? गुलामी, सुलामी, गुमनामी, नीलामी और बदनामी के चक्कर फेर से हम निकले कैसे? दलदल के दाग घावों को धोकर हम नए नवेले बने कैसे? बने खुद मस्ती में, नारायणी नशे में, ईश्वरीय आनंद में झूमे और झूले कैसे? मित्रों, राहत को सांस और सच्चे सुख का साधन पाए हम कैसे? इन सब के बारे में आपको मैं आने वाला अमृतवाणी में बतलाऊं। आज आपने दिल एन सुने हैं, आने वाला अमृतवाणी में आप दिल तो ही सुनेंगे। जरूर कृपा कीजिए श्रवण करने के लिए मित्रों, मगर ये ना भूलना कि बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। भाई बहनों, आपको कोई अच्छा दे या बुरा, सबको स्नेह दो, सहयोग दो, रहम करो, इसी में आपका कल्याण है प्यारे प्यारे भाई बहनों। और शरणागत भक्त को भजन करना नहीं पड़ता, बल्कि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भजन होता है। ये है शरणागत भक्त की आदत, वो भजन नहीं करेगा, अपने आप भजन होने लगेगा। मित्रों, मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं।

हे मानव, अब तू इस अमृत वाणी की मसाल लेकर अपने भीतर और बाहर के अंधकार से निकल, क्योंकि ये अमृत वाणी तेरा कवच भी है और शस्त्र भी। इस अमृत वाणी की मसाल अपने युग के धृतराष्ट्रों, दुर्योधनों और शकुनियों को पहचानने में तेरी सहायता करेगी। इस मसाल के प्रकाश में तू ये देख सकेगा कि अन्याय आज भी उतना ही ढीठ है जितना प्राचीन हस्तिनापुर में था। तू देख सकेगा कि धर्म ने अधर्म की चादर ओढ़ रखी है। हे मानव, तू इनसे हटकर अपना रास्ता बना, नहीं तो ये तुझे भी अपने अंधकार में घसीट लेंगे। तू प्रकाश का उत्तराधिकारी बन, तू न्याय

भीतर के कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बना, ये ही मोक्ष है, ये ही अमृतवाणी है।

अमृतवाणी प्रेमियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा, परमात्मा सबके लिए दूसरी भाग। आप आए हुए सभी भक्तजनों, आराम से बैठकर इसे श्रवण कीजिए और इसे अपने जीवन में अवश्य उतारने की कोशिश करना। भक्तों, बालकपन में खिलौनों की कामना होती है, पर आज खिलौनों की कामना होती है क्या? होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि कामना छूटती है, कामना छूटती है तो आप दूसरी कामना पकड़ लेते हैं। एक कामना छूटी, दूसरी आपने पकड़ ली, इस तरह आप नए नए कामना पकड़ते रहते हैं। सज्जनों, नए नए कामना पकड़ते रहते हैं आप। अगर पकड़ना छोड़ दे तो निहाल हो जाएं, आजाद हो जाएंगे आप, छुटकारा पा जाएंगे आप इस दुनिया की जंजाल से। परमात्मा प्राप्ति की कामना तो कभी किसी की नहीं मिटती सज्जनों, केवल दब जाती है, उसे हम दबा देते हैं। इस कीचड़ और जो कूड़ा हम अपने अंदर में रखे हैं उसके नीचे दबा देते हैं। कीचड़ कूड़ा क्या है? आपका बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे कामनाएं, ये है कीचड़ कूड़ा इत्यादि। और जो कामना टिकती नहीं उसको तो पकड़ते रहते हैं हम, और जो कामना मिटती नहीं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देती। ये हमारी वस्तु स्थिति है सज्जनों, वास्तविकता है और बिल्कुल गलत है। जिसको हमें पकड़ना चाहिए परमात्मा को, उन्हें हम छोड़ दिए हैं, और जिसको हमें छोड़ना है उसको हम पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं। उसके लिए हम दिन रात रो रहे हैं। धन दौलत वस्तुएं पदार्थ इत्यादि इत्यादि, अरे परमात्मा की कामना पूरी करने में आप सब सबल हैं, निर्बल नहीं है। परंतु संसारिक कामना पूरी करने में आप सब निर्बल है, कोई सबल नहीं है, कोई में वो ताकत नहीं है। सब तो फंसे हुए हैं दुनिया के मोह माया में। सज्जनों, आए हुए सभी सत्संगियों, सभी सत्संगी जो हमारे सामने हमारे साथ में बैठे हुए, अब एक सवाल उठती है कि संसार की इच्छा और परमात्मा की इच्छा दोनों बिल्कुल विपरीत होते हुए भी एक ही जगह रहती है क्या? प्यारे प्यारे अमृतवाणी के प्रेमियों, दोनों इच्छाएं एक ही जगह होती है। जहां भोग की इच्छा है वहीं मोक्ष की भी इच्छा है। भोग की इच्छा पूर्ण होगी और परमात्मा की इच्छा जागृत होगी, जागृत होगी सज्जनों।

संसार की इच्छा को मिटा दो, बिल्कुल मिटा दो, तो परमात्मा की इच्छा आप से आप पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी हो जाएगी सज्जनों। मगर संसार की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, असंभव, हमेशा इच्छा लगी रहेगी, ये हो जाए, वो ले लूं, वो खरीद लूं, वो कमा लूं, वो पालूं, इत्यादि इत्यादि। लाखों करोड़ों अरबों जन्म हो जाएंगे आपके, तो भी पूरी नहीं होगी, बल्कि नए नए पैदा होती रहेगी, नए नए इच्छा पैदा होती

और एक इच्छा आप में स्वतः है, वो आपके पैदाइशी ही से है। जब से ये सृष्टि है वो आप में है भगवान को पाने के लिए। संसार की इच्छा को तो आपने पकड़ा है और परमात्मा की इच्छा आप में खुद में है, आप में है वो। उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जागृत करने की आवश्यकता है। सज्जनों, मैं सदा जीता रहूं, मेरे में और कोई अज्ञान न रहे। मैं सदा सुखी रहूं, ये आपकी खुद की इच्छा है भक्तों, ये आपकी खुद की इच्छा है। भोगों की इच्छा आपकी खुद की इच्छा नहीं है, भोगों की इच्छा आपकी खुद की नहीं है। इच्छा को उत्पन्न करने वाली आप खुद है, आप स्वयं हैं। इच्छा को उत्पन्न करने वाली, सज्जनों, अगर आप खुद संसारिक इच्छा को छोड़ दें तो वो टिक सकती ही नहीं है, नहीं टिक सकती है। जिसकी पूर्ति होनी असंभव है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए ना। दुनिया के वस्तु पाने के लिए असंभव है, उसको छोड़ दो, परमात्मा को अपना लो तो जो आपको मिलना चाहिए वो अपने आप मिलेंगे। सज्जनों, संसारिक इच्छा इसलिए पूरी नहीं होती कि संसार नहीं है, और परमात्मा प्राप्ति की इच्छा इसलिए पूरी होती है कि परमात्मा है, परमात्मा है। संसारिक वस्तुएं कभी सदा नहीं रहती, मिट जाती है, पर परमात्मा सदा ही रहते हैं। सज्जनों, सदा ही रहते हैं, इस बात को आप ठीक से समझे, कंठस्थ करो। सज्जनों, भूल क्यों गए हो? भूल नहीं गए हो आप, आप जानबूझकर दुख की क्षेत्र पे चल पड़े हो। ये दुनिया एक दुख की क्षेत्र है, दुख की गांव है, और आपके शरीर भी दुनिया के दुख आप बटोर बटोर कर आप खुद अपने शरीर में डाल रहे हो। क्यों, किस लिए? प्रसन्नता प्रभु का प्रसाद है सज्जनों, इसे ज्ञान और विवेक के द्वारा सहेज कर रखना ही बुद्धिमत्ता है। सज्जनों, अगर आपको देखना ही है तो हर एक की विशेषताएं देखिए। अगर आपको कुछ छोड़ना है तो अपनी कमजोरियां छोड़िए। सज्जनों, अपनी कमजोरियां को छोड़िए, और वो है कि दुनिया में फंसे हुए हो आप, मोह माया के पीछे भाग रहे हो। यही आपकी मेरी सबकी कमजोरियां हैं, हमको इस कमजोरियां को छोड़ना है। छोड़ना मुश्किल काम है मगर असंभव नहीं है। प्यारे प्यारे भाई बहनों, असंभव तो नहीं है, तो संकल्प करो अपने में कि आज से आप छोड़ना शुरू कर देंगे। प्रतिदिन कुछ ना कुछ छोड़ते रहो, जैसे मैं बार बार कहता हूं ना कि प्रतिदिन आप एक झूठ कम बोलो, निंदा कम सुनो, कम करो इत्यादि इत्यादि, तो एक दिन सब छूट जाएंगे। मगर शुरू तो करना है, आपको तो शुरू करना है। सज्जनों, बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। प्रभु, आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। प्यारे प्यारे भाई बहनों, परमात्मा सबके लिए, ये दूसरे भाग मैंने आपको आज बतलाए हैं। आने वाला मृतवाणी में तीसरी भाग सुनेंगे आप, आखिरी भाग सुनेंगे। मेरी विनती है आपसे,

कि जीवन में सुख शांति पाने के लिए आपको परमात्मा को अपनाना ही पड़ेगा और भगवान को अपनाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। मोह माया से आहिस्ता आहिस्ता दूर होने की कोशिश करो, उसका उपयोग करो, जरूर उपयोग करो, मगर उसमें लिपटो मत, चिपको मत। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जिंदगी।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनं कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनोलो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

स्वस्ति माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेगास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं, जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी कोलिखास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोशिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों हैं, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं। एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय, क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है। विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

वीडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्तपन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं,

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एमफी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुए का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरी है ना, जो आजकल चल रहा है उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिद्धार्थ शास्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश किए फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मॉडर्न इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव सेवन पे इफ्तिखार ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूँ, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव सेवन पे इफ्तिखार में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया सुरीनाम देश में 1975 तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्र दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है रेक रियासी साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटन में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर मिसेस 55 टेटन में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फाउन एफएम इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैशन से ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आर डी बर्मन के साथ पर रफी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ।

घूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं निगतिन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

लता जी की इस गाने पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जी हाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा और चलाऊँगा ये गीत। फिल्म ये रात फिर ना आएगी, निकिती सस्त को 1966 का ये गीत। जी हाँ, सुनिए महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में।

मेरा प्यार वो है महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में अपनी सभी इच्छाएँ उन्होंने रख दी। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी नीगती सशस्त्र 1966 का ये गीत ओपेन नैयर के साज पर हमने पेश किए। लीजिए प्लेयर में एक गीत हमने और रखे है मैथी मुकेश जी का, पता नहीं बहुत दिन हुए होंगे आप ये गीत शायद सुने हैं, मैं भी बहुत दिनों बाद ये गीत चला रहा हूँ, ये भी हो सकता है आपने हाल ही में सुने होंगे तो मेरा बदनसीबी है, वरना लीजिए मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुना रहा है।

माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस अगर सैड सॉन्ग हो तो मुकेश जी तो गम का दरिया है, और ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म अप्रैल फुल में से नहीं गई फिर से 1964 का ये गीत लता दी शंकर जयकिशन के साथ।

ट्यून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, अब वो ये है, कभी कभी आप कहीं जलसे में जाते हैं यानी नेवता में जाते हैं, कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो, को शुशु शुशु बात करता है यानी छुपके छुपा के, तो इसके बारे में भी बॉलीवुड ने गीत बनाए हैं। चलिए वही गीत हम आपको सुनाते हैं। आशा जी आपको सुना रही है कि लोग कभी कभी शुशु शुशु करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, कानों में बात करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, जिसे कहते हैं काना फुसकी।

0: chouchou.
1: Chouchou.

धीरे धीरे बोलो जी, नाचते नाचते आप शायद थक गए होंगे। जी हाँ, मुमकिन है थक गए होंगे, तो लीजिए मैं आपको थोड़ी देर आराम देता हूँ।

हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर ये गीत पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हमने पेश की मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी फिल्म एक बेचारा में से निकाल कर निकली त्वीन सैफ का ये गीत। चलिए अगला गीत है और वो गीत है नतीजा हमारी मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है?

ये तुम भी ना सोचो, ये हम भी ना सोचे, मैथिली मुकेश और आशा जी मिलके आपको गीत ये सुनाए ओ फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

छाई बरखा बहार आंगना फुहार निगती निग्न से स्थ आशा जी और जी लता आशा और लता मिल के गाए हैं फिल्म चिराग में से निकाल कर निगती निग्न से स्थ 1969 का ये गीत हमने पेश की मदन मोहन के साज पर। चलिए मदन मोहन जी के बाद हम पेश कर रहे शंकर जय किशन, क्या शंकर जय किशन इस तरह से।

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए।

0: जाती हूँ।
1: हो जाती है, आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: दादा।
0: सुनो तो
1: दादा।
0: सुनो तो
1: दादा।
0: सुनो तो आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: कहा, काम तो बताइए।
1: काम?
0: हाँ।
1: काम सीधा साधा है, मेरा एक वादा है।
0: अच्छा?
1: प्यार को निभाओगे?
0: निभाऊंगा।

आप यहाँ आए किस लिए? वादे तो बहुत लिए, लेकिन करना पड़ेगा ज़रूर, तो अवश्य करेंगे। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, और ये गीत इस तरह से है।

आओ प्यार कर ले। जी हाँ, फिल्म सच्चा झूठा में से निकाले हैं आशा जी और साथी मिलके आपको सुनाएं निगती सैफ अंतक का ये गीत है। कल्याण जी आनंद जी के साथ पर गुलशन बावरा का लिखी हुई गीत हमने पेश की। फाहन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम, हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम, हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम।

उसने तो उतार रख दिया। जी हाँ, हमने शुरू में कहा था लता जी, लेकिन नहीं आशा जी, रफ़ी साहब, आशा जी की ये लड़ाई हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो प्लेयर में। हमने एक गीत रखे हैं और वो गीत जाना पहचाना गीत है, अलका याग्निक की लाइफ। अलका याग्निक की लाइफ प्रोग्राम हम आपको सुनाएंगे इस तरह से, अलका याग्निक जी लाइफ।

World Film Theater यानी कांग्रेस का वो उन दिनों नाम था 2001 का यह लाइव कार्यक्रम अलका याग्निक जी की हम आपको सुनाएं।

साथ दी है लता जी रफी साहब के साथ, फिल्म ताजमहल में से निकाले हैं रोशन के साथ पर आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बस चलो सुनते हैं आशा जी। आशा जी बस अब बच के कहाँ जाओगे, फिल्म यकीन में से शंकर जय किशन के साथ है, फिल्म यकीन है निगती निघ्न शस्त्र का 1969 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

बच के कहाँ जाओगे आशा जी की आवाज में आपको हम सुनाए हैं शंकर जय किशन के साज पर। आजकल तो सिर्फ ऐप आता है और कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ख़त का ज़माना ही चला गया। ख़त सिर्फ ब्लास्टिंग कंट्रोल का आता है या सिकोफोन्स का या कोई इंस्टांसी सा, लेकिन परिवार का ख़त बहुत कम आता है। सब कुछ तो ईमेल से होता है, ऐप से होता है, टेलीफोन से होता है। क्या ज़माना आ गया। चलो हम आपको ख़त के बात करते हैं प्यार में।

ये वो ज़माना का दौर था जो ख़त लिखे जाते थे और तकिए के नीचे रख कर सो जाते थे। बहरहाल रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाएं कन्यादान में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले वही ट्विटर से नहीं, इनका लाइव कार्यक्रम। जी हाँ, लाइव कार्यक्रम कांग्रेस खबाओ का यानी वर्ल्ड फ्रीडम ट्विटर का ट्विटर से इनका अलका याग्निक जी आपको सुना रही है।

Alka Yagnik Ji ki life for Khurama. Virut Forum Teata Yane Congress Kaba Undino 2001 ka humne nikal kar aapko sunaye. Chaliye Evergreen Kishore Kumar. Evergreen Kishore Kumar keh raha hai apne saathi se ki kya kiya jaye. Chalo darya mein doob jaye, kood jaye, mar jaye ya tair kare. Chalo sunte hain. Inhi se kyunki main to bhul gaya ki in logon ne gaaye kya hai. Bas मैं भी सुनता हूं, उम्मीद आप भी सुनते होंगे और आप चूने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर. तो सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं, डूबने की बात, मरने की बात या तैरने की बात है.

ये खो जाए हम, ये तो नदी में ढूंढने की बात नहीं की है लेकिन एक हो जाने की बात की है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हमने प्लेयर में रखे हैं, फिल्म कर्ज तो आपने देखे ही होंगे। जी हाँ, चलिए कर्ज में से निकाल रहे हैं

फिल्म कर्ज में से निकालकर एवरग्रीन किशोर कुमार की शानदार गीत हम आपको सुनाए लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में।

0: दर्द भरे गीत भोजपुरी में यहाँ से आपके लिए पेश किया गया है। मेरे दोस्तों, आपको मेरी प्यार भरी नमस्कार स्वीकार होए और ये आशा उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप जरूर से ये दिन, ये पल हंसी में जरूर से गुजारे।
1: मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तो और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

लड़ती है जब तक उसके दिल में मोहब्बत की उम्मीद बची रहती है, लेकिन जिस दिन वो उम्मीद मर जाती है उस दिन से औरत खामोश हो जाती है। मर्द ये समझ ही नहीं पाते बीवी का झगड़ना, उसकी जिद करना असल में उसके प्यार का सबूत है, क्योंकि जो औरत अब बोलना ही छोड़ दे समझ लो उसके दिल का कत्ल हो चुका है। मर्द सोचते हैं कि छत और खाना देना ही काफी है, नहीं, औरत को सिर्फ रोटी नहीं चाहिए, उसे प्यार, इज्जत और अपनापन चाहिए। जैसे स्त्री से मरा हुआ कपड़ा जिंदा हो उठता है, वैसे ही सबके सामने इज्जत देने से एक बीवी की रूह तक जिंदा हो जाती है। याद रखना, औरत की खामोशी सबसे बड़ा इल्जाम।

0: मारजान मारजान, ये सुंदर सा भोजपुरी भोजपुरी गीत आपके लिए इस प्रोग्राम में शामिल कर दिया गया है। आपको पसंद आ रहा है, आप बता रहे हैं, ये मुझे भी सुनकर अवश्य अवश्य बहुत खुशी हो रहा है।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: आज की रात स्ट्रीट टू फिल्म का नाम
2: इस हुस्न पे
0: स्पेशल

कपड़े उतार कर जिस्म की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती, वो तो बस एक पल का नशा है जो सुबह होते ही उतर जाता है। मोहब्बत तो तब साबित होती है जब वो औरत टूट रही हो और तुम उसका सहारा बनो। वो औरत जो तुम्हारे सामने खुद को बिखेर देती है, वो तुम्हारी जीत नहीं, वो उसका भरोसा है। वो तुम्हें अपने जिस्म से नहीं, अपने यकीन से अपनाती है। और अगर तुमने उस भरोसे को तोड़ दिया तो समझो तुमने सिर्फ एक दिल नहीं बल्कि एक औरत का विश्वास, उसकी इज्जत और उसका सब्र तोड़ दिया। याद रखना, बिस्तर पर आ जाना सबूत नहीं कि तुमने उसे पा लिया, बल्कि ये सबूत है कि उसने खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा किया था। कपड़े उतार कर जिस्म की भूख मिटा लेना मोहब्बत नहीं होती, वो तो बस एक पल का नशा है जो सुबह होते ही उतर जाता है।

इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। पति पत्नी का रिश्ता खून से नहीं, एहसास से जुड़ता है। एक इज्जत की पति पत्नी का रिश्ता खून से नहीं, एहसास से जुड़ता है। एक बोल दे तो दूसरा चुप रह जाए, यही प्यार की समझ है। जहां मैं की जगह हम आ जाएं, वहीं से जिंदगी संवर जाती है। रिश्ते को निभाने के लिए शब्द नहीं, नीयत हर दिन एक रिश्ते को निभाने के लिए शब्द नहीं, नीयत चाहिए होती है। हर दिन एक दूसरे को समझना ही असली मोहब्बत है, और जब दोनों एक दूसरे के दर्द को अपना लें, वही सच्चा विवाह कहलाता है। पति पत्नी मर्द चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दुनिया के सामने सख्त क्यों ना दिखे, लेकिन उसके दिल का सबसे नरम कोना उसकी पत्नी के लिए होता है। माँ बाप, भाई बहन और दोस्त जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन असली सुकून और अपनापन सिर्फ पत्नी से मिलता है। पत्नी ही वह शख्स है जिसके सामने मर्द अपने डर, दर्द और थकान खुलकर बांट पाता है। उसके बिना घर दीवारों का ढेर बन जाता है और जिंदगी खालीपन का बोझ लगने लगती है। इसलिए कहा जाता है, मर्द सबका सहारा बन सकता है, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत

0: ठीक सुने, आपने ठीक सुने, जो बेन नौतियाल जी की आवाज में ये सुंदर सा गीत आपने सुने, मैं भी सुनी, मुझे पसंद आए, आपको पसंद आए, वफाना राजा आई।
1: इसी पढ़े लिखे मूर्ख ने लिखा है कि रिश्ता हमेशा स्त्रियां तोड़ती है, लेकिन एक बात याद रखना, स्त्री जितना त्याग करती है ना, एक पुरुष कभी नहीं कर सकता है। स्त्री अपने हम सफर को गलत पाने पर भी उसको सुधारने की कोशिश करती है, अपने बच्चों के लिए उसी के साथ रहती है और कभी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन पुरुष एक स्त्री को गलत पाने पर तुरंत छोड़ देता है, इसलिए स्त्री से आप कभी भी जीत नहीं सकते।
0: फिल्मी तर्जनी पर यहां सुनेंगे हम। आवाज में जीना भी क्या है जीना।

0: ऐसे ये सुंदर सा गीत पवन सिंह जी की आवाज में फिल्मी तर्जनी पर अपनी ही धुन पर ये लिखकर और डाल दी है और यहाँ से हमने भी चला दी है हम सभी के वास्ते।
1: क्या आपको पता है मर्द कब रोते हैं? नहीं, वो तब नहीं जब कोई उन्हें धोखा देता है। मर्द तब रोते हैं जब जिंदगी उन्हें बेबस कर देती है। मर्द रोते हैं जब माँ का आशीर्वाद सिर से उठ जाता है। मर्द रोते हैं जब जेब खाली होती है और बच्चों की ख्वाहिश बड़ी। मर्द रोते हैं जब बेटी डोली में बैठती है और वो मुस्कुराते हुए भी अंदर से टूट जाता है, पर किसी ने देखा नहीं, क्योंकि इनके आंसू जमीन पर नहीं गिरते, ये दिल के अंदर ही गिरते हैं। वहीं से झुर्रियां बनती हैं, वहीं से सफेद होते हैं बाल, वहीं से कांपने लगते हैं हाथ। समाज कहता है मर्द को दर्द नहीं होता, पर सच ये है मर्द हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है, बस दिखाता नहीं। अगर आप किसी मर्द की इज्जत करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।

माँ ये तेरा अच्छा बेटा अब पागल सा रहता है, घर के कोने में तुझसे बात करता है। और हाँ माँ, अब तेरा बेटा जिद नहीं करता, खाना ठंडा हो या पसंद का ना हो तेरा बेटा खा लेता है।

अरिजीत सिंह जी के आवाज़ में सुंदर भरी, प्यार भरी, दर्द भरी, एहसास भरी, माँ के लिए, माँ बेटे के लिए, माँ पुत्र के लिए, माँ बेटियों के लिए, माँ माँ होते हैं वो सबको अपने ही दिल में, अपनी ममता में समेट कर और रखते हैं और सबको प्यार से रखती है।

कोई मातम नहीं करना, नहीं, ये दर्द जो है, दर्द जो है, दर्द आते हैं और जाते हैं, सुख आते हैं जाते हैं, पर हमें संभल कर और होश हवास में ये सब को सामना करना पड़ता है। अगर हम सामना नहीं करेंगे तो हम टूट जाएंगे, लूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो ये जिंदगी जो हमें मिली है मेरे प्यारे जीवन दोस्तों, ये जीवन को हमें सुविधा से सोच समझ कर और आगे बढ़ना है। दुख में घबराना मत और जो सुख आए तो इतराना मत। बैलेंस बैलेंस बैलेंस बनाए के रखना, इसी में

मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में अदावर्ष नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है जुलाई की 14 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल टीम की तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हो, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, सब मिला जुला कर कोशिश करूँगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मई बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अभी आपने मुझसे पहले संता के ज़रिए से प्रोग्राम को सुन रहे थे। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

तकदीर के कलम से कोई बच न पाएगा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत सुन रहे थे मेरे हिस्से का प्रोग्राम में। चलिए अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

ये दिल लेकर नजराना आ गया तेरा दीवाना। अभी आपने आशा भोसले और साथ में मुकेश से गीत सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने साधना सरगम और मोहम्मद अजीज से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 7 मिनट बाकी ढेर बजने में आप फाहुन रेडियो पे चून है। एक नज़र बाहर की ओर डालूं तो मौसम अच्छा है, तापमान टेम्परेचर 27 से लेकर 30 ग्रेड तक है।

गोरे रंग पर इतना गुमान कर गोरे रंग ढल जाएगा। अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इस गीत का लेखक है आनंद बख्शी। मैं ये दिल को, दिल के सखम को लेकर, मैं ये दिल के सखम को लेकर कभी हंसती हूँ कभी रोता हूँ, मुझे दुश्मनों से गिला नहीं है, मैं दोस्ती के ये, मेरी दोस्ती का ये चाल है।

अभी आपने आशा भोसले से गीत को सुना कि किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, हमको फूलों के बदले कांटों का हार मिला। आशा भोसले ने इस गीत को सुनाया है मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। देखा जाए तो 1:30 बजकर 3 मिनट व्यतीत हो चुका है।

अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और आशा भोसले से गीत को सुना, जब घर में चूल्हा जलता है तो तुम क्यों होटल में जाकर खाते हो।

नीले नीले अंबर पर जब चांद आए भी अपने किशोर कुमार से गीत को सुना। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे हैं, गाने वाला है मुकेश।

दूसरा जमाना बचपन का। अभी आपने मुकेश से गीत को सुना रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। तेरे कदमों में मैंने अपना सर को झुका दिया, जो वादा किया था तुमसे वो निभा के दिखा दिया।

साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत को सुना।

और छलिया छलिया नाचे जिया, जब ये अपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे, ठीक दो का वक्त है।

दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भय रामा और जुलम भय। अभी आपने लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है गंगा जमुना। जो गीत आप इस बार सुनने को जा रहे हैं, गाने वाली है लता मंगेशकर और इस खास करके पेश है फ्रिसलान द्राख्तन के रहने वाली आयशा जहांगीर के वास्ते, जो इंटरनेट द्वारा रेडियो फाहोन को सुनते हैं।

दूर कहीं दूर हमें ले चलो सनम, अभी आपने लता मंगेशकर से गीत सुना, गीत करके खास गीत खास करके पेश था फ्रिसलैंड रख्तन के रहने वाली आयशा जहांगीर, जो रेडियो फाहौन के प्रोग्राम इंटरनेट के जरिए सुनते थे। आपके नाम पर ये गीत हमने पेश किया है।

0: हाफिज खुदा।
1: गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। अभी अपने लता मंगेशकर से गीत को सुना, इसमें देखा जाए तो 2:11 व्यतीत हो चुका है।

परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया। अभी आपने लता मंगेशकर और साथ में किशोर कुमार से गीत को सुना। इसमें देखा जाए तो 2:16 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे से तक है और 3 बजे के बाद रेडियो फाहन के अनाउंसर साथ ही प्रोग्राम को ऑफर लेगा। जिस दिल को कहते हैं वो एक बार दिया जाता है, जिस दिल को कहते हैं वो एक बार दिया जाता है, प्यार जिसको कहते हैं वो एक बार किया जाता है।

एक परदेसी मेरा दिल ले गया और जाते जाते मीठा मीठा होम दे गया। फिर अपने आशा भोसले और रफ़ी से, पद्माश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना।

तुम सबसे हसी हो और सबसे जवां हो, अजी मेरी नजर में आई हो। अभी आपने आशा भोसले और महेंद्र कपूर से गीत को सुना। 3 मिनट बाकी है 2:30 बजने में हमारा, और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे से प्रोग्राम को रेडियो फाहन के अनाउंसर साथी ऑफर लेगा।

प्रेम जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार। अभी आपने लता मंगेशकर और साथ में किशोर कुमार से गीत को सुना। एक चिड़िया पिंजरे के अंदर है, एक चिड़िया पिंजरे के अंदर है, पिंजरा खोल दो उसे जाने दो। अगर वो वापस आ गया तो वो तेरा था, अगर वापस नहीं आया तो तेरा न था और कभी ना होगा।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार न करे। अभी आपने अलका याग्निक और साथियों से गीत को सुना है।

तुम मगर साथ देने का वादा करो। भी आपने महेंद्र कपूर से गीत को सुना, इसमें देखा जाए तो 3:45 का वक्त है।

चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी जाए, मिलके न होंगे जुदा, आग कसम खा ले भी अपने। अलका याग्निक और शबीर शाहीन से गीत को सुना रहे दियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में।

तुम्हें ने दर्द दिया है और तुम्हें जाकर दवा देना। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और गीता दत्त से गीत को सुना है।

देखिए ये हंसी शाम ढलने को है, अब तो मुझे इजाजत दे दो घर जाने को। अभी आपने मुकेश और लता मंगेशकर से गीत सुन रहे थे।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगलवार को अपना मिलन होगा और हमारे बाद प्रोग्राम को ऑफर लेगा रेडियो फाहोन के अनाउंसर साथी। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज़, नमस्कार।

0: जी हाँ मेरे दोस्तों, नदीम खान जी की आवाज़ में हमसे सुने, हम सब ने सुने कि किसी से मुझे प्यार हो। यश तमनीर ओम वातर तर द्रिंकन ड्रिंक वातर तर वेल उसित वातर ड्रिंकन तर वेल उस्ताद कान schadelijk zijn voor uw gewrichten en nieren. Lang, drink langzaam, langzaam drinken. Niet doorslokken. Langzaam drinken geeft het lichaam de tijd om het water goed op te nemen. Lauw water op een lege maag in de ochtend. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en versnelt het stofwisseling. Hou voldoende tijd voor en na de maaltijd. Drink niet te veel water direct na het eten, maar drink het pas na 30 minuten. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink 8 tot 10 glazen water langzaam verspreid over de dag.
1: आज मैंने कुछ सोचा है।
2: कभी कभी ये काम भी करना चाहिए।
1: आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
2: मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है।
1: अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
2: और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है।
1: ये फाइनल है यार।
2: फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना
1: यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे।
2: क्या?
1: वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
2: मैं क्यों करूं?
1: अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। चाहे और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
2: देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
1: जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
2: घर तो तेरा होगा।
1: एक बीवी होगी।
2: तेरी होगी।
1: 7-8 बच्चे होंगे।
2: तेरे होंगे।
1: पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
2: यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
1: समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी मां होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा दे। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
2: साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
1: सच?
3: अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लू।
2: हाँ सच कहा मौसी, आपने बड़ा बोझ है आप पर।
3: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
3: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
3: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कंबक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
3: तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना,
4: फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
3: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
4: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए।
5: Dit is geweldig. Diabetes hield me nooit tegen. Het zorgde alleen voor meer zorgen. Maar Omnipod 5 werkt samen met mijn sensor om automatisch insuline toe te dienen. Wat helpt om mijn waarde binnen bereik te houden. En het is waterbestendig. We gaan ervoor. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipod.
4: Je juwe en sharaab ki aadat to do din mein chhoot jaye.
3: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
4: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
3: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
4: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
3: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
4: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
4: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं।
4: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
6: कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
7: अरे भाई ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो
8: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
6: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम, गुड बाय, गुड बाय।
7: अरे भाई ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
6: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ। रुकियो, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
3: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्तों, तुम क्यों मैं क्यों?
4: क्यों क्या हुआ?
3: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो
6: मेरा दिल भर चुका।
3: देखा देखा तुमने?
4: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। मुझे जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
3: क्योंकि मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
6: इसलिए मैं चांते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
7: कैसी मुसीबतें आएंगी?
6: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, police coming, Buddha going jail, in jail, Buddha chucky pissing and पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
8: अरे मौसी हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
3: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी।
6: अरे गाँव वालो, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे करूंगा। एक दो तीन
8: कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
3: अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
8: आ गया तो मौसी।
3: हाँ ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
8: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
6: मौसी से कौन शादी करेगा सालो, मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से
3: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
6: अरे गाँव वालों सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
0: कहते कि मौसी से कौन शादी करेगा, मैं तो बसंती के लिए आई हूँ। हाँ, इसलिए मरना कैंसर, जीना है मेरे प्यारे, जीना है।

0: gedachten zijn hulpmiddelen, geen stuur. Geluk ontstaat niet in eindeloos denken, maar in ervaren, vertrouwen en aanwezig zijn.
1: इसलिए परेड कब से शुरू हो गई?
2: बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है।
3: नया जेलर बहुत खड़ूस है।
4: आ रहा है।

0: सर, वो तो पहले ही से अटेंशन।
1: आप जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। कान लियो, कान खोल कर सुन लो। हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है, वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो नो नो नो नो।
2: Operatie Back to School.
3: Jij,
2: schoolspullen. We willen geen verrassingen.
1: हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। आए, ये क्या?
0: परिंदा हुजूर, कबूतर, कबूतर।
1: निकालो, अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो।
0: बड़ा अजीब आदमी है,
4: जेलर था, जासूस कौन है?
5: मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ।
4: हाँ, हरिराम नाई।
6: हरिराम, अब तो ये मुझे भी निकाल दो।
7: सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
8: अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
9: काट दिया।
7: सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
8: सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
7: बैंक नंबर 9 के बराबर से।
8: कहीं जेलर को पता ना चल जाए।
7: किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
8: आओ। बस हो गया।
10: आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
8: आप होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
10: आओ, जेल में सुरंग?
8: क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग?
7: यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे
10: हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई। हमारी जेल में सुरंग?

0: तो भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? तो ये है सुरंग बनाने का औजार।
1: जेल में आ चुका है। बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को
0: हमारे जेल में पिस्तौल
1: जी
0: हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां,
1: सिपाहियों
2: gezond. Kies echt. Kies
3: Zespie.
4: 3, 2, 1,
0: 1. En Baki, hamare saath aao.

0: पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
1: चलो कैसे, तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
2: पहला ऑर्डर कैंसिल। चार
3: अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
4: पहले हाथ से हमें गेट तक छोड़कर आओ।

0: Trabalho com o
1: Yes, sir.
0: Here, Chad. Here, happy star.
2: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
3: अरे कोशिश? ये थी कोशिश? जान तोड़ कोशिश करी? मगर मैं भागने दू तब ना एक को दी मैंने पटखनी के वो लंबू निकला भागने को मैंने पकड़ के टांग खींचिए के जाते किधर वा और कस के धो दिए लफाड़े के चलो छाने बस फिर क्या था पैर पकड़ लिए दोनों ने
4: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए
3: हाँ हाँ
4: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो
3: अरे वो बदमाश है मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि तूरमा भाई माफ कर दो वो तुम्हें माफ कर देता मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए
0: फिर क्या हुआ
3: अरे फिर हो रहा क्या था मैं तो इश्तिक रखता हूँ आज जो मैंने फिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी धटा धट धटा धट बहुत मारा
0: फिर क्या हुआ
3: बस फिर होना क्या था मैंने दोनों के पकड़ के गले फांस और मैंने कहा
0: क्या कहा
3: क्या कहा हाँ, क्या कहा मैंने हाँ मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे अरे मियाँ आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो चलो हाँ काम करो अरे जाओ भैया जबरन झूठते रहते हो जाओ मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था और हाँ बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से ये माशाल्लाह तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी डन डन हो रही है
0: सूरमा भाई
3: हाँ भाई
0: हम अपने 1000 रुपए लेने आए
3: 1000 रुपए
5: हाँ हाँ 1000 रुपए
3: अच्छा हाँ 1000 रुपए अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे वो दिन है और आज का दिन है लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो ये देखो 200 के 10 है गिन लो
5: अच्छा सुरमा भाई फिर मिलेंगे
6: कुछ डायलॉग आपके लिए पेश किया गया है और आगे में जो समय रहे तो जरूर से और भी डायलॉग आपके लिए यहाँ से हम पेश करेंगे
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
6: Kijk je vertrouwen kan bergen verplaatsen, maar als het breekt, dan verdwijnt niet alleen de kracht, maar ook de blik van wie je werkelijk ziet. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig, maar elke strijd brengt je dichter bij rust. Verhalen en dromen zijn wat voor bestaan, wanneer feiten stof en as zijn en vergeten. Er zijn dagen dat de zon niet opkomt in de lucht, maar in jezelf. En dat is genoeg om de wereld te laten stralen. Soms moet je breken om te ontdekken welke licht er al die tijd in je verborgen zat. Je draagt de stilte niet om te vluchten voor de wereld, maar om de wereld in jezelf te horen spreken. En soms moet je dwalen in de stilte om jezelf terug te vinden in het geluid van wie je echt bent. Waardeer het leven zoals het is, het zal nooit worden wat je begeert. Sommige dingen worden niet makkelijker. Sommige dingen worden niet makkelijker. Je geest wordt gewoon sterker. En je hoeft niet stil te staan om aandacht te geven aan wat telt. En soms kan de kleinste stap in de goede richting de grootste stap in je leven zijn. Henna.

0: Net even anders, gewoon perfect. Extra lucht.
1: Mere liye tum kaun? Kaise bataun main tumhe? Tum dhadkanon ka geet ho, jeevan ka tum sangeet. Tum zindagi, tum bandagi, tum roshni, tum taazgi. Har khushi, pyar ho, preet ho, manmeet ho. Aankhon mein tum, yaadon mein tum, neendon mein tum, khwabon mein tum. Tum ho meri har baat mein, tum ho mere din raat mein. तुम सुबह में तुम शाम में तुम सोच में तुम काम में मेरे लिए पाना भी तुम मेरे लिए खोना भी तुम मेरे लिए हंसना भी तुम मेरे लिए रोना भी तुम और जागना सोना भी तुम जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां।

0: मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में, मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं।
1: नाना पटेकर जी की आवाज में उन्हीं के गीत ये गाए हुए हैं। Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Jij moet beslissen wie er in je geest mag wonen. Kijk, ki do talwar, ik mayan mein nahi reh sakta. Uit de scherven van het verleden, uit de scherven van het verleden, zorgvuldig bijeengerapt, ontstaat een mozaïek van wie ik nu ben. Eerst gebroken, daarna verweerd, toen geheeld en uiteindelijk weer compleet.

ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ, अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ, ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

और आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

पुरंदर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फोन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

प्रीत सुन हल्लो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राश्मिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

बस जॉनी नंबर वन है दोस्तों, यहां से प्रोग्राम को हम ओवर लेते हैं। आज है मंगलवार, या मैं से इस अल दिनसदाग, और जिस दिनसदाग है मंगलवार है तो जॉनी आ जाएंगे। आज है मंगलवार यानी कि फिर 3 जुलाई हो चुका है। घड़ी की ओर देखा जाए तो नई खमनीतन ओवर 5 है दोस्तों, और मंगलवार के तो हम प्रोग्राम को हम बनाते सजाते हैं। और जरूर अब हम सुरीनामी न्यूज़ पढ़ेगा हमारे दोस्तों। आज मंगलवार है, 4 जुलाई घड़ी की ओर देखा जाए तो नई खमनीतन ओवर 5 हो चुका है। करीब 6 बजे तक हम अपना देश और विदेश के समाचार को सुनाएंगे, उसके बाद हम यानी कुछ मिली जुली गीत भी आप लोग के सुनाएंगे। अभी आप लोग हमारा कोलेगा का साथी और वो है संजय भगवंत से प्रोग्राम को सुना है, और उससे पहले आज रहीम भक्त जी रहा, बीबी साहेबा रहीम भक्त रहा, और लोग था आज। और यहाँ से अपना हिस्सा के प्रोग्राम हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। हमारी जनता, प्यारे प्यारे जनता,

कहते कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वतीमान धन दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। आप लोग को एक बार फिर कहते हैं स्वागतम स्वागतम। हमारा प्रोग्राम हर मंगलवार को चलते ही शाम को 5 से लेकर 6 बजे ले, कभी कभी 6 से लेकर 7 बजे, यानी शुक्रवार को फ्राइडे को चलते हैं 6 बजे हमारा देश विदेश के समाचार। रविवार के सोमदा को दिन में 1 बजे हम हर हाल करते हैं। तो हमारे जनता, हमारे दोस्तों, हम तुरंत चलते हैं अपना सूरीनाम की ओर, वहां से हम आज शुरुआत करेंगे अपना समाचार। आप लोग जानते हैं कादेंसी कौन है भैया? एक कादेंसी जो है, और एक कादेंसी है भैया फैया पेयर रहा, फैया पेयर रहा कादेंसी, और एक आर्टिस्ट है भैया कादेंसी, आर्टिस्ट भी हैगा। तो ये फैया पेयर रहा, और यहाँ पर अब अपना बयान यहाँ पे करते हैं। कादेंसी बोले है वही हैवन सो वी सो ओ खीन इरलक फलक, बोले हमार जनता जो न है सूरीनाम के, बोले इरलक ना है, इरलक जनता ना है, इकादेंसी बोले है दोस्तों। और यहाँ बोले आर्नोल्ड बुकरू, आर्नोल्ड बुकरू बोले बतेकन बेहतर बकेंत आर्टिस्ट कादेंसी, ओकर नाम है आर्नोल्ड पुकरू, ओकर नाम है कादेंसी। वो बोले सरनाम के जनता जो है, बोले इरलक ना, सच्चाई पे ना है, बोले हैगा जो समय पे बहुतर्स प्रेसिडेंट बहुतर्स रहा, बोले कि उस समय पे इल किसके वे ओम द एड फूरिंग पर आईएमएफ प्रोग्रामों जो रहा, तो जाने आईएमएफ प्रोग्रामा बनावे कि ऐसे ऐसे तुनन बसाइन करिए, तब देशवा तो मोई हुई। बोले जब उस समय पे प्रेसिडेंट रहा बाउटर्स, अब बोले जो का चाहता एड फूर करे के आईएमएफ के प्रोग्रामा, कैडेंसी बोले हैगा सामल लिविंग बोले ऑन फॉलोन द क्रिटिस रहा एंड व्हाट इंफॉर्मेशन फैक्ट्स ऑन द एकन ऑन द सुख अनखनो, बोले जनता न जात्रा अंदर सुख करे, बोले जोन ची बोलत रहा बहुता वही बतिया, बोले सबन सुनत रहा, बोले अब जाए के रखेरे संतों की ब्रंसवेग जले से, तो बोले उस सब एक स्वार प्रोग्रामा हैगा, बोले आईएमएफ के बोले उस सब एट फूर करी सेगा, बोले बहुतर्स न कर ले रहा एट फूर वार दोर देशवा एनम छिछक ले दर हो रहा, बोले जो ब्रंसवेग और संतों की ले से देशवा, तो बोले उस सब अपन आईएमएफ प्रोग्रामा बोले उस फूर करी से, बोले इन सही तखान में स्वार प्रोग्रामा ऐट फूरन, और बोले ऋषि को रहा उस के दत से बेरे एस्ट फॉलखन फॉर किसिंग ना रहे सो वर्दन कस्तूर ओम दत, उस सब जनता लोग के स्वार बसाय न करवावत रहा देशवाओ करे के बके उची बहुत न कर ले रहा बसाय न कर ले रहा वही मारे देशवा सुधरल ना। तो अब बोले ब्रेंसवाइक और रोनी ब्रेंसवाइक और उनका बोले संतोखी जली से, तो उसे तोह ऋषि कुआ ले से, बाकी जनता बोले हम लोग के बोले कि चलाक ना है कि वो चीजवा वो देख पावे। हाँ दोस्तों, बोले वे हेवन सो इज ओक इन इरलक फलक, बोले दारोम स्टेमन वर्स ओग, बोले हैगा वखान नोइट ऑन सुकन अस ईमान इसेख, बोले सनी मक kakeloos aan. Bouters heeft zelf in het verleden gezegd dat indien hij het IMF-programma uitvoert, hij morgen dan thuis is. En dan heeft Chan ook thuis gezet. Maar er moest iets gebeuren, want akondre bingo in wan ola. Bole deswa hol me jatra. Lekin Bouters uchijuwa nagaila deke. Bouters bole jab hum IMF-programma kar, to bole janta hamme ghare baitha di. मैं जनता बोले ना देखे कुछ युवा नौ दख रहा आई एम एफ प्रोग्राम हो हम दस देशवा एंडम चिच्चा के लेदर हो गए
रहा बाकी जनता ना देख पाए कि तोख ब्रेंसवेग असंतोखी चीजवा कल रहा ये बात करेंसी बोले है और बोले है एरवास्किन आंध्र ऑप्सी बोले वहां थे लंच साथ में फील स्कूलन बोले बहुत कर्जा ले रहा और बोले रखेरिंग ब्रेंसवेग और का बोले है संतोखी बोले इन रखेरिंग जो नहींगा दोन सक्सेसफुल आउटपुट करी सेगा यानी कि आईएमएस प्रोग्राम और बोले ओकर फोरदील जो नहींगा एंड न्यू कांड हैडक रखेरिंग सिमोंस के रखेरिंग और एनपीएस के रखेरिंग द फ्रुक्टन एरफान प्लेकन बोले अब उस अब ओकर फ्रुक्ट प्लेक करे हैं बोले फॉल्स द पॉलिटिकस इस हेड ओक duidelijk dat regering Simon Ruslan meer geld heeft geleend dan regering Santoki. Hij zelf had zich aankomen dat Jennifer Simon een moeilijke regeerperiode tegemoet zou gaan, aangezien zij weigerde de deskundigheid van buiten, waaronder die hem van de VHP, te accepteren. Cadenzi stelde dat hij voordat hij werd bedankt als adviseur van de staatshoofd al een heleboel plannen op papier had ingediend, waarmee hij het staatshoofd zou ondersteunen om haar beleid gemakkelijker uit te voeren. Helaas is daar niets mee gedaan en is hij naar huis gestuurd. Ja, de cadentie erbij mee. Boli zega, toen hem Pinsen herhaal kreeg. Maar jenta.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

और दोस्तों हम अपना समाचार को आगे को बढ़ाते हैं। अब देखो जनता क्या हुआ है। मार्टिन लूथर किंग वेक में 45,000 भैया एसर दी रो वैले कटली से नानी। हाँ कटली से एगो आदमी कटली से गए ले उतरा पैसा रोफ करके चल गए है। और जो ओफर फाल कर कटली से ना दिखाई से काटी से भैया स्नेफर वॉर्नर ऑफ आंसन बोफन लेप ऊपर से ओठ काट दे से रमिया के नाक ना काटी से ओठ काटी से भैया और फैफो फिर तक दैसन मार के चल गए भाई। सूरीनाम के बान बतियाल हम जाएल उक्रेन के भैया रुसलान आदमी मारे है उक्रेन में बेसुल्ले है और उक्रेन तेल के सब कुछ पराठा कर ले बा फीनी रुसलान में कि हुआ पे जनता के तेल ना रहेगा। अब उक्रेन एक और बवा करी से पुतिन के ऊपर उक्रेन फॉल से आन अजोफ आन न्यू होप पेंडो से फॉर पुतिन। अब ये सब का करे उक्रेन जे तरह रुसलान के बोट समुंदर में बात तेल ले जाए कब ओके दागे भैया। उक्रेन फॉल रेम एंड वीक फ्रॉक्स के इपन टैंकर्स एंड स्लीप बोटन ऑफ द सी फन अजोफ आन द फैंसी एक्सपर्ट पैट्रिक बोल्डर फॉर द Forstreet legt uit wat de gevolgen zijn voor Rusland. De Rusland kiezingen ook barca aanpad hoi ge bhaiya. Socho, ab dekho, waarom de NAVO veel miljard euro aan de vluchtuig uitgeeft. Ja, wat de NAVO veel miljard paisa uitgeven kan zeggen. Maar wat doet die toestel in de lucht? Ik heb maar hem zo'n lucht toe aan mijn kontje kare hè. लिख तो हमें कौन ची करे भैया एक बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे। साथ ही साथ भैया गासा में गासा तो लोन जानो है गासा में पालस्तीन के बताएला पालस्तीन से बवीखें के को गासा बा हमास इसराइल जाए के को पुलिसी ब्यूरो के दागे से भैया जो पुलिसी ब्यूरो हुआ कहाँ बोले हैगा हमास टेररिस्ट ग्रुप हमास ड्राई करत रहा और वहाँ पे जो दागी से वहाँ पे स्कूल सब मर गए है बे इसराइल से लुफ्त लुफ्त अनफाल ओपन ब्यूरो फॉर द पुलिसी नॉर्थ लेके गासा में पालस्तीन से ऑथोरिटेटन आठ गो आदमी मरल हुआ पालस्तीन से बवेकिंग हमास दी द पुलिसी कंट्रोलर द हेव द अनफाल फॉर ओरडील एंड सेग दैट द शेफ फॉर द ब्यूरो अंडर द डोडन इज Israël heeft opnieuw melding gemaakt dat een luchtaanval pinkeri terroristen pe John oktober se bole usab Gaza me ba Israël blijft aanvallen uitvoeren. Daarbij zijn volgens Palestijnse autoriteiten 1100 Palestijnen merge he en 3578 Palestijnen chotaige bhaiyawan idhar jab ka bole shuru kari se Amerika dage ke Iran ke idhar shuru kar इसराइल हमास लोग के दागे के भाई तो ये बात है। एगो आदमी भैया बर्लिन में पकड़ा ने ट्वेन ट्वेन तक औरत के ऊपर क्रख कर ले रहा अख्तन शस्तक यार आदमी एगो बर्लिन में है और बतावे है गा कि ना ना हर फर दोफन एन फर क्रख्तन फन फिर तीन फ्रोवन फर दोफ करके फर क्रख कर ले रहे 14 औरत के दी है इन टोटल ट्वेन ट्वेन तक के सो हेमन फर क्रख बाप रे 22 keer 14 औरत को verkracht कर रहा। ook zei hij her gevaarlijk hebben verwond dat meldt Duitser op de slag

बस एक गीत से अपना समाचार को हम खत्म करते हैं और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार, प्यार भरे नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे है तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि आप पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएंगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदाते हैं कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

प्रो दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटता है? वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटता है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम डोर जॉनी नंबर 1।

और बदन भी सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्ट्रांस, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं। प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिस इज अंतिम फन मै बेस्ट लॉइस्ट्रांस। एक नोख रिमिक्स ड्राए मीन्स एक नोख रिमिक्स ड्राए, तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

दोस्तों, डम डम डम डम, और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा, डम मारो दम था। हाँ, कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है मेरा।

पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है। कैसे कैसे बजाएं करे, कैसे बजान करे अलाम इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो, तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

मंच में जाके पता चला है कि चोली के पीछे क्या होता है। चोली के पीछे दिल होता है दोस्तों, और दिल तो सबके पास होता है, लेकिन किसी को उज

और तो ये आपका कौन सा दिल है आपको खुद मालूम होगा, लेकिन ये चोली के पीछे और कुछ दिल है दोस्तों। तो यहां से हम अगला और हॉट वन और कुछ नाचनी स्विंग के गीत हम आपको सुनाते हैं। क्या है

और नमकीन हो गई है, नमकीन हो गई वो और पानी पानी का ये सॉन्ग थे हमारी यार वो, और हम चलते हैं अगला अगला हॉट वन सॉन्ग की ओर। और वो क्या है, वो क्या है, चोली के बात, चोली के बात क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है?

और गुपचुप गुपचुप गुपचुप गुपचुप क्या होता है, गुपचुप में बहुत कुछ होता है। और जाए के और सो गए किसी और जगह, जहां पान नहीं सोना था।

और दारू पी के डांस करे और डांस करे, बिना दारू पिए यहाँ लोग डांस करते हैं और गीत कहते हैं कि दारू पी के और डांस करे।

छम्मा छम्मा कौन है, किसका नाम है छम्मा छम्मा, और छम्मा छम्मा के बाद तो हम और आगे चलते हैं, और वो क्या है।

0: और नौ एंटी मारे बेरियो फन हैप्पी ऑल टेट एंट्री सेंसेशन
1: एक नशा से चढ़ता है
0: ऑन रेडियो फन

नींद के मारे में क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ गलत मत कर देना, नींद में बहुत कुछ हो जाए।

0: मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की।

0: से गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशरम, शेखर,
2: मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
2: होता है तो होने दो।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खत द्रेडी खतक का आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और रोहमी नहीं

फूल को भी तुझको, रफी जी की, मोहम्मद रफी जी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई, जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रिय से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं। नहीं किया तो करके देख, और ये है नाइटिंगेल, नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और 1900 का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर। ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए, और कौन सा दीवाना आएंगे, हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, और सुना जाए मैथिली मुकेश का ये सॉन्ग है।

0: और नजर बचा कर चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों
1: मुकेश भाई थी। मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वह माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।